मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर एवं एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्स पर। यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 की आषाढ़ माह की छठवीं तिथि, तदनुसार 27 जून सन 2026। प्रातः की 5:58 और 36 सेकंड हुए हैं। इसी के साथ हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। समाचारों के तुरंत बाद एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्ज़ पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में

0: आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन। जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत के साथ साथ धैर्य का होना भी बहुत आवश्यक है।

हे ईश्वर, आप ही हैं सबके पालनहार, करो कृपा और दे दो ज्ञान का उपहार। हम सब तो है अज्ञानी और है नादान, मन में करो उजाला, मिटा के अंधकार।

हे दयालु कृपालु देव, हे परमेश्वर घट घटवासी, अंतर्यामी दया निधान कृपा निधान भगवान, हम सभी भक्तों की यही प्रार्थना है कि जिन राहों पर आप हमें लेकर चले, जिन राहों पर चलते चलते हम अपना कल्याण कर सकें और दूसरों का भी कल्याण करें, पूर्ण शांति और सुख को पा सकें, वही हमारे से कर्म करवाना जो हमारे कर्तव्य हैं और जिसे करते करते हम आपकी शरण प्राप्त कर सकें।

हे ईश्वर, आप है करुणा निधान, ज्ञान गुण सागर। गहरा है ज्ञान आपका, आप है क्षीर सागर। हमारी यही पुकार विनती सुन लो एक बार, दया करो प्रभु, लगा दो हमारी नाव भवसागर।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान।

भरत को श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मान सभी अयोध्यावासी उनके साथ राम को लौटा लाने के लिए वन जाने को उद्यत हैं। मंत्रियों को आदेश दिया गया है कि वे राज तिलक की सारी सामग्री वन में ले चलें, जहां वशिष्ठ जी श्री राम का राज तिलक करेंगे। सबसे आगे अरुंधति तथा अग्निहोत्र की सामग्री के साथ मुनि वशिष्ठ रथ पर सवार होकर चले। उनके पीछे तेज और तपस्या के धनी ब्राह्मणों के दल अनेक सवारियों पर आसीन हैं। नगर के नर नारियों के सुसज्जित रथों के साथ हैं रानियों की पालकियां। सबको विदा करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई पैदल चल पड़े तो माता कौशल्या ने भरत को बुलाकर उनकी बलैया ली और उनसे रथ पर सवार होने को कहा। दोनों भाइयों ने माता की आज्ञा सिर पर धारण की।

0: अभी आप सुन रही थी श्री रामचरितमानस गान। आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनों भाइयों राम राम। भाइयों कृषि की बात हम आज जिक्र करेंगे हर हर फसल की देखभाल और कुछ समय वह बिजाई का। तो इस बारे में तो ये देखे हैं कि भाई अपना जो टाइम चल रहा है तो बात जड़े भी खेती बाड़ी की आओ है। सबसे पहले कि वह कि भाई अपना मौसम नाम ध्यान में रखें।

0: और मौसम की अगर बात करी जाए तो वही अपना थोड़ा मिजाज देख लें, क्योंकि कई दिन आते मौसम थोड़ा हा बादल वाई आंधा कितने गड़फड़ बूंदाबांदी तका चल रहा है, तो मौसम थोड़ा साफ होन दिए भाई। हमने जो भी फसल बिजाई कर रखी है खास तौर पे अरहर की बात करी जा, तो भाई जब भी भाई बिजाई करें थोड़े दिन बाद में भाई ये देखे हैं कि तो बूंदाबांदी हो रही है, नहीं तो फिर भाई अपने टाइम से उसमें न्यू देखा कि पानी भी देना पड़ेगा। और फिर कई जगह खरपतवार जो आ जाए हैं, जो खरपतवार हैं वो अपनी प्रमुख जो फसल है उसने घेर ली हैं, उन्हें दबा ली हैं, तो इस नाम बिल्कुल ही चाहे वो कसोलों की मदद है, चाहे कोई कसोली की, या फिर जिस तरीके से भी हम निकाल सकें, आजकल बहुत से आधुनिक यंत्र भी आ रहे हैं भाई अड़ाई का नड़ाई का, तो इस हिसाब से हमने उसकी निराई गुड़ाई करनी जरूरी है ताकि ये अवांछित जो खरपतवार हैं अपनी प्रमुख फसल के में नुकसान नहीं पहुंचा पाएं। और अरहर की जल्दी बात आओ भाई, अरहर की कम समय में पकने वाली जो मानक किस्म है H77 है, 216 है, UPS 120 है, पारस है, H82-1 के नाम से है, ये बहुत बढ़िया किस्में हैं जो कि अपना 130 से 140 दिनों में पाकी तैयार हो जाए ये। और इन सभी की जो बिजाई है इस महीने में हमने पूरी कर लेनी है, और एक एकड़ के लिए भाई लगभग 5 से लेकर 6 किलोग्राम जो बीज हमने वो डालना है। इन सभी किस्म की बिजाई कतारा में 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रख के हमने करनी है। और यह देखा जाए कि और भी जो अच्छा रहोगा कि अरहर की जो दो कतारा के बीच के एक ही समय अगर हम मूँग है उड़द है कि कम समय में पकने वाली जो किस्म इनका अगर इस्तेमाल कर ले हाँ तो बहुत ही बढ़िया रहो अपनी फसल भी, चाहे वो अरहर की है मूंग की है, तो एक मिश्रित फसल भी हो जाएगी, रिश्ता हमने एक बढ़िया थोड़ा उत्पादन भी मिल जाएगा, अपना पूरा खेत जो है खाली भी नहीं रहने पाओगा। तो उड़द की किस्म कम समय में पकने वाली किस्म भाई कतारा में हम जैसे कि बोस्का है इसमें एक एक एक एक कतार उगाई जाओ है। और यह देखा जाए कि अगर ऐसा ना करना हो तो भाई खुड्डा का जो फासला हमने 50 सेंटीमीटर रख की अरहर की जो बिजाई है वह कर देनी है। बीज ने राइजोबियम का टीके तो उपचारित हम जरूर कर लें, क्योंकि हर एक जो फसल है इसमें हम उपचार करके चलेंगे, चाहे वो अरहर की बात आओ है चाहे कोई सी फसल हम बो रहे हैं, तो आखिरी तक जो है वो अपनी फसल की रक्षा कर रहे हैं, कुछ कीट पतंगे बीमारियां कोई बीज जनित बीमारियां हैं वो इसमें नहीं आ पाऊंगी। जिन खेतों में भाई अंगमारी का प्रकोप रहा उनमें अरहर की हमने खेती नहीं करनी है। अरहर की बिजाई करते समय भाई 18 किलोग्राम यूरिया और 100 किलोग्राम इसमें सिंगल सुपर फास्फेट या फिर इनके अभाव में 35 किलोग्राम डाई एमोनियम फास्फेट है या DAP 1 किलो के हिसाब से हमने इसमें बिजाई के समय पोर देनी है, ड्रिल करनी है। और बीज ने बोते समय भाई राइजोबियम का जो टीका है उसने लगाने की पैदावार में वृद्धि पाई जा है, संभावना है रहा है कि भाई इसके लिए भाई 1 एकड़ के बीज में एक टीका राइजोबियम का और एक टीका हमने फास्फेटी का फास्फेटेरिया का बिजाई तो पहले लगाना चाहिए। तो ये कुछ एक बात का हम ध्यान रख लिए हैं, बढ़िया खेत तैयार कर लिए हैं, ठीक ठाक हम उसका में खाद पानी अच्छी तरीके से साफ सुथरा बिजाई बढ़िया अपनी किस्म का चुनाव करा, चाहे वो कोई सी फसल हम ले रही हैं उस तक पैदावार किसान भाई ठीक ले लिया है, चाहे वो बात अरहर की आओ है मूंग की आओ है या फिर निराई गुड़ाई की आओ है, सारी चीज़ जो है सारे काम खेती बाड़ी में भाई संभाल के हैं मेहनत की हैं, तो थोड़ा सतर्कता करें ध्यान करें अपनी फसल बाड़ी नाम ठीक पैदावार लेने खातिर इन बातों ने जरूर हम ध्यान में रखें, चाहे वो बीज का चुनाव हो चाहे खेत का चुनाव हो। तो इस हिसाब से तो आज भाई कृषि की बातों में इतना ही, आपका दिन शुभ हो।
1: ये थी कृषि की बातें, आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचकः दिव्यानंद झा। अथ वार्ताः प्रधानमंत्री

0: संहितस्य क्षेत्रीयेषु अन्ताराष्ट्रियेषु च विषयेषु सविस्तरविचारणार्थं सेशेल्स् देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह संवादं करिष्यति। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गुजराती भारत टैक्सीति सहकारिता धृत भाटकयान सेवायाः शुभारम्भं करिष्यति। सहकारिता क्षेत्रस्य वरिष्ठाधिकारिणः विभिन्नानां संस्थानानां प्रतिनिधयः भारत टैक्सी सम्बद्धाः चतुस्सहस्राधिकाः सारथीति चालकाः च अस्मिन् कार्यक्रमे सहभागं करिष्यन्ति। आदौ अहमदाबाद सूरत वडोदरे इत्यादिषु गुजरातस्य चतुर्दशसु जनपदेषु अस्याः सेवायाः आरम्भः भविष्यति। आगामि मासपर्यन्तं राज्ये सर्वत्र सेवाविस्तारस्य योजना अस्ति। गृहमन्त्री अमितशाहः गतवासरे मादकद्रव्याणि विरुध्य संयुक्तसङ्घर्षाय आहूतवान्। सः अवदत् यत् मादकद्रव्याणां प्रकोपः राष्ट्रियसुरक्षायै, सामाजिकस्थिरतायै, आर्थिकहिताय, यूनां देशस्य च भविष्याय भयं जनयति। सः आध्यात्मिकनेतॄन्, यूनः, मातृशक्तिं च अस्य सङ्घर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुम् आग्रहीतवान्। श्रीशाहः नवदिल्ल्यां मादकद्रव्यविषयक संयोजनकेन्द्रस्य दशमशीर्षस्तरीयसभां सम्बोधयन् एवम् अभ्यभाषत।
1: मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: उत्तर प्रदेशारक्षिबलेन श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासस्य दानराशि वञ्चना प्रकरणे प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण अष्टौ जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमन्त्रिणः योगिनः आदित्यनाथस्य निर्देशेन विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसानन्तरं पञ्जीकृतम् आसीत्। इदं प्रकरणं श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासेन प्राप्तानाम् उपहाराणां, दानानां च वञ्चनासम्बद्धारोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखम् आगतम्। न्यासस्य अनुरोधेन मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन एकस्य विशिष्टनिरीक्षणदलस्य सङ्घटनाय आदेशः प्रदत्तः। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् सोमवासरं यावत् दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, पूर्वीयोत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्रोत्तराखण्डेषु, लक्षद्वीपस्य कतिपयक्षेत्रेषु च तडित्पातस्य सम्भावना अस्ति। कोलकाता दुर्घटनायां आहतानां संख्या एधित्वा षोडश सञ्जाता अस्ति। तत्र व्रणितानां उपचारः SSKM चिकित्सालये प्रवर्तते इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में दो नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों

0: बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्तार शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। अमेरिका ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि उसकी ईरान पर उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका की विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित संघर्ष समझौते में हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। FIH पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर करारी शिकस्त दी। मैच के पहले क्वार्टर में लंदन में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। सातवां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

विशेष सभा के अंतर्गत शाम 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

युवाओं का दैनिक आयोजन कार्यक्रम युवा संसार प्रसारित होगा शाम 5:30 पर, जिसमें आज का विशेषांक होगा रोजगार समाचार। समसामयिक चर्चा के साथ फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुबह सवेरे का आनंद आप लेंगे प्रातः 7:30 पर।

शाम 7 बजे कार्यक्रम ग्रामीण संसार में आज आप सुनेंगे पत्रों पर आधारित हरियाणवी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। शाम 6:20 पर कार्यक्रम कृषि जगत में आज आप सुनेंगे ढींगरी की काश्त विषय पर बातचीत का प्रथम प्रसारण। वार्ताकार होंगे डॉक्टर राकेश चुग।

दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम खेत खलियान में आज चर्चा का विषय रहेगा शकरकंदी की काश्त। प्रातः 8:30 पर कार्यक्रम लोक संगीत में आज आप सुनेंगे गायक कलाकार प्रेम सिंह देहाती को।

दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम प्रसारित होगा। पत्रों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम पसंद अपनी अपनी। कार्यक्रम सुगम संगीत का आनंद आप लेंगे रात 8:25 पर और प्रातः 7:15 पर। रात 9:15 पर आप आनंद लेंगे कार्यक्रम एक फिल्म से का। फिल्म संगीत प्रसारित होगा देर शाम 7:30 पर। चित्रपट संगीत आप तक पहुंचेगा दोपहर 1:10 पर।

फिल्म संगीत कार्यक्रम सबरस आप सुनेंगे प्रातः 9 बजे। ये थी कार्यक्रम रूपरेखा। आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है, जिसमें आज के कलाकार थी गार्गी हल्दर। आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को आपकी रेडियो साथी सोनिया शर्मा का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज़ कर रहे हैं इस गीत के साथ।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: मिट्टी के उस वीर सपूत को जो देश की शान रहा, जिसके शौर्य के आगे झुकता हर दुश्मन का अभिमान रहा। एक आँख में साहस की ज्वाला और मन में अटल विश्वास था, दुश्मनों के छक्के छुड़ाने को जो हरदम तैयार खास था। अमृतसर को स्वर्ण बनाया और लहराई सरकार ए खालसा, हिंदू मुस्लिम सिख सभी को एक सूत्र में बांधने वाला था। गोहत्या पर रोक लगाई, न्याय का जो परिचायक था, पूरे भारत की माटी का वो सच्चा एक नायक था। आज याद करते हैं सब मिलकर उस शूरवीर की गाथा को, शत शत नमन है उस रणबांकुरे और शेरे पंजाब की यात्रा को। जी हाँ श्रोताओं, सिख साम्राज्य के संस्थापक शेर ए पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी की पुण्यतिथि आज हम

मना रहे हैं हर साल, जो कि 27 जून आज के दिन मनाई जाती हैं। इनका निधन 27 जून वर्ष 1839 को लाहौर में हुआ था। इन्हें इनकी वीरता, धर्मनिरपेक्ष शासन और अखंड पंजाब के निर्माण के लिए याद किया जाता है। इनका जन्म 13 नवंबर वर्ष 1780 को गुजरांवाला वर्तमान पाकिस्तान में जो है वहाँ हुआ था। इन्हें शेरे पंजाब कहा जाता है। वर्ष 1801 में इन्होंने पंजाब को एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। इन्होंने अमृतसर की प्रसिद्ध हर मंदिर साहिब, जो कि स्वर्ण मंदिर, को सोने की परत से सजाने के लिए इन्हें जाना जाता है। इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर पाकिस्तान स्थित इनकी समाधि गुरुद्वारा डेरा साहिब लाहौर पर प्रार्थना और श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है आज के दिन, जिसके लिए भारत से सिख श्रद्धालु हर साल वहां जाते हैं। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी को उनकी पुण्यतिथि पर शत-शत नमन। इनकी वीरता, दूरदर्शिता और धर्मनिरपेक्ष शासन की गाथाएं आज भी हमें प्रेरित करती है और आगे भी करती रहेगी।

लघु और मध्यम उद्योगों की गाथा, बढ़ती अर्थव्यवस्था की नई प्रभा, छोटे हाथों ने गढ़े हैं बड़े सपने, कौशल की चमक में बदल गए अपने, गांव-गांव जागे हुनर के सितारे, छोटे कारखाने बने जग के सहारे, मेहनत और लगन का यह अनोखा मेल है, स्थानीय उत्पादों का अद्भुत है खेल, MSME की शक्ति है देश की शान, रोजगार के अवसर और बढ़ाता है मान, आत्मनिर्भरता का यह सच्चा आधार वैश्विक मंच पर पहुंचता है कारोबार, हर चुनौती का डटकर सामना किया, हर उद्यमी ने हौसलों को थाम लिया, चलो मिलकर इस उद्यम पर्व को मनाएं, भारत के विकास को नई दिशा दें और आगे बढ़ाएं। जी हाँ श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम दिवस, हर साल 27 जून यानी आज के ही दिन मनाया जाता है। इसे वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2017 में स्थापित किया गया था, ताकि स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में इन उद्योगों के महत्वपूर्ण योगदान और सतत विकास में इनकी भूमिका को मान्यता दी जा सके। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषा भारत में निवेश और कारोबार पर निर्भर करती है। सूक्ष्म यानी निवेश 1 करोड़ से कम और टर्नओवर 5 करोड़ से कम, लघु उद्योग जो कि निवेश 10 करोड़ से कम और टर्नओवर 50 करोड़ से कम, मध्यम उद्योग निवेश 50 करोड़ से कम और टर्नओवर 250 करोड़ से कम। भारत में अगर बात करें जो कि इसका जो महत्व है, अगर रोजगार सृजन के क्षेत्र में जो कि कृषि के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद GDP में इन उद्योगों की हिस्सेदारी लगभग 30% से अधिक है। भारत की कुल निर्यात में इनका योगदान लगभग आधा है, लगभग 48%। प्रमुख सरकारी सहायताएं और योजनाएं हैं जो कि उद्यम पंजीकरण, यह एक निशुल्क कागज रहित सरकारी पोर्टल है जहां छोटे व्यवसाय पंजीकरण करवा सकते हैं। PM विश्वकर्मा पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल और ऋण सहायता देने की योजना है। PMEGP नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण आधारित सब्सिडी कार्यक्रम है। संयुक्त राष्ट्र ने जो कि राष्ट्रीय महासभा में पारित एक प्रस्ताव में के माध्यम से आज के ही दिन को इस उद्यम दिवस के रूप में नामित किया और वर्ष 2030 तक संयुक्त राष्ट्र शांति और विकास कोष के सतत विकास 2030 एजेंडा उपनिधि द्वारा वित्त पोषित किया गया। आज की जो थीम है, वर्ष 2026 की थीम की बात करें तो इस दिवस की जो थीम है, नवाचार और सतत औद्योगिक विकास के माध्यम से लघु एवं मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाना है, जिसमें यह विषय डिजिटल परिवर्तन, लचीलेपन और सतत विकास लक्ष्यों के माध्यम से छोटे व्यवसायों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है।

परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, यह एक सत्य है। बिना कठोर मेहनत और लगन के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता, या यूं कहें कि अगर हमें सफलता पानी है तो इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि निरंतर प्रयास और अभ्यास ही हमें ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। चाहे कोई विद्यार्थी है या कोई कारोबारी है, बिना मेहनत के अपने सपनों को पूरा करना असंभव है। कड़ा परिश्रम करने से हमारे कौशल और क्षमताओं में निखार आता है, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमारे अंदर आंतरिक रूप से आगे बढ़ने की शक्ति आती है। एक विश्वास आता है कि हम मेहनत करते हुए आगे बढ़ेंगे तो सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। जो मेहनत करते हैं वे असफलताओं से निराश होने की बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ते हैं।

0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। तत्पश्चात 8:15 पर समाचार होंगे अंग्रेजी में, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात

0: मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
3: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहाँ हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
4: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: अमरीका ने

0: जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमरीकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
1: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
3: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
4: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
5: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
6: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के

0: समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टिपत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्ता ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ $12 अरब का आंकड़ा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 3-day state visit to Seychelles this morning to attend Seychelles' 50th National Day. Union Home and Corporation Minister Amit Shah to launch Bharat Taxi service in 14 cities of Gujarat today. India develops world's first hydrogen production facility that uses heat from nuclear reactor. New Delhi launches Operation Amistad to aid quake-hit Venezuela, sends relief material and medical assistance as death toll rises to 920. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashes Pakistan 7-1 in London last night. And in football, 2-times champion Uruguay crash out of FIFA World Cup after losing to Spain 1-0. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 3-day state visit to Seychelles this morning to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces, along with 2 Indian Navy ships, will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Harmeni, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Our correspondent has filed this report.
3: Prime Minister Modi will address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: लोक संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कलाकार प्रेम सिंह देहाती को।

इसी के साथ हमारा आज का लोक संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है, जिसमें हमारे आज के कलाकार थे प्रेम सिंह देहाती। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रातः के 9 बज चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सुहाग फिल्म के इस गीत के साथ। इस गीत को आवाज़ें दी है मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह ने। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वर्मी दीवाना फिल्म से गीत आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को लिखा है समीर ने, धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाए आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: कार्यक्रम के अगले गीत को आवाजें दी हैं सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर ने। नरेंद्र शर्मा की शब्द रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया है। फिल्म का नाम है प्रेम रोग।

नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में किंग अंकल फिल्म से गीत आपको सुनवा रहे हैं। इंदीवर की शब्द रचना है और धुन तैयार की है राजेश रोशन ने।

किंग अंकल फिल्म से अभी आपने गीत सुना। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी फिल्म से। सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने इस गीत को आवाज़ें दी हैं, समीर के बोल हैं, आनंद राज आनंद ने संगीतबद्ध किया है।

कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहब्बती फिल्म से। इस गीत को आवाज़ें दी हैं उदित नारायण और लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी के बोल हैं, जतिन ललित ने संगीतबद्ध किया है। फिल्म का नाम है मोहब्बतें।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम सब रस अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके बाद 10:05 पर समाचार होंगे अंग्रेजी में, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्बनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में यह सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रखे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5

0: 5 तीव्रता के भूकंप से भीषण तबाही हुई है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रॉड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में कल आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला रविवार को होगा। वहीं फीफा विश्व कप 2026 में दो बार का विश्व विजेता उरुग्वे स्पेन से 1-0 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। इसके साथ ही स्पेन ग्रुप एच में शीर्ष पर है। खेल के 42वें मिनट में एलेक्स बयाना ने स्पेन के लिए विजयी गोल किया। ग्रुप एच में काबू वर्दे और सऊदी अरब का मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। इसके साथ ही काबू वर्दे राउंड 32 में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi embarked on a 3-day state visit to Seychelles this morning to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. In his departure statement ahead of his 3-day visit to Seychelles, Mr. Modi said that this year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between the two countries, founded on mutual trust, shared diplomatic values, respect for diversity and strong people-to-people ties. The Prime Minister said that he is looking forward to holding discussions with the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermione, to strengthen the enduring friendship between the two nations and deepen cooperation for the progress and prosperity of the people in the Indian Ocean region. Our correspondent has filed this report.
2: Prime Minister Modi will address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora during his visit. Today, he is scheduled to visit the botanical gardens for a tree plantation ceremony and visit the Seychelles Coast Guard base. India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural and people-to-people ties. As a key maritime neighbour in the Indian Ocean region, Seychelles holds a special place in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. The visit will reaffirm the strong and enduring friendship between India and Seychelles and reinforce the shared commitment of both countries to enhance the bilateral relationship across all sectors. Suparna Saikia, Akashwani News, Delhi.
1: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah will launch cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat at the Mahatma Mandir in Gandhinagar today. Mr. Shah, who is on a 3-day visit to Gujarat, is also scheduled to launch several key initiatives and chair review meetings. Our correspondent reports that along with Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi, representatives from cooperative sector, and more than 4,000 drivers will participate in this program. Secretary, Department of Atomic Energy, Ajit Kumar Mohanty has inaugurated the world's first hydrogen production facility based on the copper chlorine thermochemical cycle, utilizing the nuclear process heat generated from the fast breeder test reactor at the Indira Gandhi Center for Atomic Research, Kalapakkam. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a productive roundtable interaction with the Asia House and senior executives from leading global firms in London. During the meeting, discussions on strengthening economic ties and exploring future opportunities were deliberated. In a social media post, Mr. Goyal said that India and the United Kingdom are poised to deepen their economic partnership through the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement. In Venezuela, death

0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर, डीटीएच और न्यूज़ ओनी आईआर पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 12:20:20 हुए हैं। हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब शुरू होते हैं। आरंभ में सुनिए लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम पसंद अपनी अपनी।
1: पसंद अपनी अपनी कार्यक्रम सुनने वाले सारे भाण भाइयों ने आनंद भाई की राम राम। और भाई आज शनिवार का दिन और शुरुआत करेंगे भाई आजाद सिंह और साथिया की गाई रागनी के साथ। श्रोता इसमें रहेंगे भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, कुणाल मेहरा और किरण मेहरा, कपिल मेहरा। अलीकाट बवाली से बसंत सिंह छन, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी। भाई इसी रागनी ने पसंद करे हैं लोको कॉलोनी लोहारू से बिल्लू सिंह चिंडालिया, सुरेंद्र कुमार चिंडालिया, योगेंद्र कुमार और नरेंद्र कुमार चिंडालिया, श्रीमती लक्ष्मी देवी। अगले श्रोता हैं गांव बिरौली जींद से सुरेश सांगवान, सचिन सांगवान, अंकित सांगवान। गांव बाणा ब्रह्मनान से हैं मेघराज शर्मा, गौरव, सौरव, विजय, अजय, जितेंद्र, जोगिंदर शर्मा। इसी रागनी ने पसंद करने वाले हैं महेंद्रगढ़ से विकास गांधी, ममता गांधी, दिया गांधी। फरूख नगर गुरुग्राम से श्रोता हैं भीम व्यास, सुमित व्यास, अभिनव व मयंक व्यास। गांव खेड़ी तलवाण महेंद्रगढ़ से विजय सिंह लखेड़ा, राजेश मास्टर, प्रकाश अंबवता। तो सुन भाई अपनी ये पसंद।

तो ये सुनी बहन आज़ाद सिंह की गाई रागनी आगरी, रागनी बहन सुनवाऊंगे रामफड़ शर्मा और साथिया की गाई हुई। और पसंद करने वाले श्रोता इसमें होंगे खेड़ी चोपटा जिला हिसार से पंडित सत्ता रेड्डी राजा राम पुनिया रामहर शर्मा किताब सिंह शोरण, गांव पांडू पिंडारा जिला जींद से श्री बादल सिंह गिल कमलेश गिल टीनू प्रीति डॉक्टर अंकित गिल, गांधी चौक रोपड़ से हैं हरदेव मिक्का बलविंदर विरक जेतक और मिक्का विरक। इसी रागनी ने पसंद करने वाले श्रोता हैं गांव गैसी बागपति यूपी से चौधरी काशीराम दलाल बलदेव सिंह आर्य राम फल दलाल दयानंद रमवीर नितिन अर्पित प्रियांशी ओमपाल सन्नी शाह राव निमेश नैन, गांव कस्बा छपरौली बागपत उत्तर प्रदेश से जसवंत सिंह खोखर राजकुमार खोखर अनिल खोखर विनीत खोखर सचिन मोक्ष तनुज, और गाँव डिकाणा बागपत से जयपाल जयकुमार रोहित। इसी रागनी ने पसंद करे हैं गाँव सच्चा खेड़ा से ड्राइवर बलबीर सिपाही सुरेश हवलदार वेद बिहारी, गांव नीमड़ी से श्रोता हैं श्री जगदीश सिंह बलवंत सिंह अतर सिंह सुरेश कृष्ण कुमार धर्मा नंबरदार घोगुड़ी देवी जागेराम सदन सिंह चरण सिंह सुभाष चंद्र नंबरदार, बौंद से हैं गीसा और नौरंग, गांव द्वारका से शमशेर सिंह, जिला जींद में गाँव देवरड़ से श्री राम चहल वीर सिंह कमल सिंह और हरिचंद्र विरागी पंडित महासिंह जगदीश रघुवीर मांगेराम। तो सुने भाई अपनी ये पसंद है।

जरे दिसन वजीरी सत्यलोक में सुबह और शाम डरे उस मान संग सस लख

0: कार्यक्रम की अगली रागिनी भैया ने सुनवाऊंगी बाली शर्मा और साथियों की गाई हुई, और पसंद करने वाले श्रोता इसमें रहोंगे गांव सांगवान जिला भिवानी से तोसाम से शमशेर सिंह गुजर पाला राम गुजर सुमन रानी रवि कुमार गुडी देवी पवन होमगाड़ बलजीत सरपंच। इसी रागिनी ने पसंद करे हैं झज्जर से बिट्टू भाटिया रीटा भाटिया मयंक और रत भाटिया, गांव फ्रासी से राजकुमार डूडी सरजीत सिंह प्रमोद कुमार सौरभ डूडी, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा अमित राय, और इसी रागिनी ने पसंद करे हैं भाई छत्तीसगढ़ भाटा पारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा, बिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार सरिता और गौरव गरिमा शर्मा। तो सुने भाई अपनी ये पसंद।
1: हेरे माँ जाई के बेटे गोदू हेरे की सतरिया ते आया और अनबोले में

हेरिया मैं सब जानू के थारे घर में कमी नहीं से धन में आपस में करें शर्म सगिया की

खेतरी माता मेरी बाण सगी हमें एक उदर में लोटी चार साल का फर्क उम्र में वा बड़ी में छोटी तेरा देखो दोष नहीं मेरी गलती होगी मोटी।

चोट लगी से तेरे से मबूल में आ झूठ गया यो ये दुख से मेरे देखे मेरे बस की बात नहीं तो यो हो गया रे बन तेरे साल उठ मुँह धो लिए बेटा।

ये तो सुनी बहन रागनी बल्ली शर्मा और साथियों गाई हुई। कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति भजन सुनाओगे बलवान सिंह और साथिया की गाई हुई रागनी। पसंद करने वाले श्रोता इसमें रहोगे गांव चिड़िया दूधवासे सोनू संगेलिया मंजीत संगेलिया तनिश। इसी रागनी ने पसंद करे हैं जिला जींद गांव में से राम राय से गंगा सिंह प्रधान उषा रानी सीमा रानी पूजा बाई रिंकी विक्रम परविंदर विजेंदर और परिवार के सभी सदस्य। और अगले श्रोता हैं गांव मटोर जिला कैथल से रामदिया नीलम बोध सिसाए से अजय टाक विजय टाक और तमन्ना। इसी रागनी ने पसंद करे हैं रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा सोमनाथ कालिया। अगले श्रोता हैं आदर्श गांव बलियाली हरियाणा से दर्शन लाल बंसल सुदेश रानी प्रवीण कुमार और ममता रानी कमल कुमार बंसल। अगले श्रोता हैं गांव हिरण छप्पर से जयपाल धीमान यशपाल धीमान विनोद कुमार और भूवंश धीमान। अगले श्रोता रहेंगे चौधरी वास से राजू अग्रवाल केशव और विवेक प्रयाग प्रियांशी मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन सुनीता जैन सुनीता शर्मा सुनीता ढिल्लो संदीप गुगलानी। लाल मस्जिद भिवानी से प्रवीण पोपली अमित और बेबी ज्योति तुलसी देवी शीला देवी गीता। गांव चौधरी वास से मांगेराम सातोड़ सुनील टेलर शुभम और यश। इसी रागनी ने पसंद करने वाले श्रोता हैं जिला जींद में गांव देवरड़ से श्री राम और वीर सिंह धर्मचंद प्रजापत दयामुराम विरागी। और गांव सच्चा खेड़ा से श्रोता हैं हवलदार वेद बिहारी। आदर्श नगर मलोट से हैं राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा। और इसी रागनी ने पसंद करे हैं अलीका डबवाले से बसंत सिंह छन कुलदीप गांधी। और पटेल नगर मलोट से हैं रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी जाजोरिया गगनदीप जाजोरिया और बेबी

0: ये तो सुनी बहन बलवान सिंह और साथियों का रागनी सिंह के साथ भाई हो रहा है। मैं अपना देख लें घड़ी का नहीं चलेंगे सारे भण भैया ने। राम राम।
1: आपने सुना कार्यक्रम पसंद अपनी अपनी, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन का 1 बजने वाला है। कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, इसके बाद 1:05 पर प्रादेशिक

0: में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फोरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में गुजरात के लिए देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। फिलहाल राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की गई है। श्री शाह ने कहा कि देश के मोबिलिटी क्षेत्र के लिए आज एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में टैक्सी की जरूरत आम है। श्री शाह ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य लोगों का शोषण रोकना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में अभी भी बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में प्रदूषण नियंत्रण के लिए पहली अक्टूबर

0: से नो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नो फ्यूल नीति लागू करेगी। इसके अलावा नई इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने के साथ साथ एनसीआर में 23 नए निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। साथ ही 1000 किलोमीटर शहरी सड़कों का पुनर्विकास भी किया जाएगा। सरकार ने मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के तहत आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में इन पहलों की समीक्षा के बाद यह जानकारी दी। परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजशेखर वुंडरो ने बताया कि वर्ष 2026 के दौरान गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल और रोहतक में 925 इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने की योजना है। वर्तमान में 70 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, जबकि 385 अतिरिक्त बसों के लिए खरीद आदेश जारी किए जा चुके हैं। शेष बसों की खरीद उच्च अधिकार क्रय समिति की स्वीकृति के बाद चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। इससे स्वच्छ एवं टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि वायु प्रदूषण की प्रभावी निगरानी के लिए 23 नए केंद्र स्थापित किए जाने से इनकी कुल संख्या बढ़कर 45 हो जाएगी। नए केंद्र 30 सितंबर से पहले पूरी तरह संचालित करने का लक्ष्य है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि हरियाणा के एनसीआर जिलों के सभी 2780 पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान ANPR प्रणाली स्थापित की जा रही है। पहले चरण में गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत के 775 पेट्रोल पंपों को कवर किया जाएगा, जबकि शेष 2005 पेट्रोल पंपों पर भी निर्धारित समय सीमा से पहले यह प्रणाली स्थापित कर दी जाएगी। इसके लागू होने के बाद ईंधन भरवाने से पहले वाहन के पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट का इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तय आयु पूरी कर चुके वाहनों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। अब तक 2883 पुराने वाहन जब्त और 2010 वाहन कबाड़ किए जा चुके हैं तथा स्वैच्छिक रूप से वाहनों को हटाने के लिए 6054 अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कल तीसरी एशियाई रिले चैंपियनशिप 2027 का ध्वज प्राप्त किया। उन्हें यह ध्वज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के खेल विभाग के निदेशक सौरभ कुमार अरोड़ा द्वारा सौंपा गया। चीन के शाओक्सिंग में आयोजित दूसरी एशियाई रिले चैंपियनशिप 2026 के समापन समारोह के दौरान औपचारिक रूप से यह ध्वज सौरभ कुमार अरोड़ा को सौंपा गया था, जो वहां चंडीगढ़ प्रशासन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस अवसर पर बोलते हुए चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने इसे चंडीगढ़ के लिए एक गर्व का क्षण बताया और कहा कि शहर प्रतिष्ठित महाद्वीपीय चैंपियनशिप के अगले संस्करण की मेजबानी करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह 1989 एशियाई रोइंग चैंपियनशिप के बाद से चंडीगढ़ में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन होगा और यह चंडीगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए एक उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। प्रशासक ने बताया कि चैंपियनशिप सेक्टर 7 खेल परिसर में आयोजित की जाएगी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास की साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत रोजगार जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण करेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू किया है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आइए फिल्मी गाने सुनते हैं।

ये था टैक्सी चोर फिल्म का गीत, किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाजें आपने सुनी। गीत लिखा था अनजाने संगीतकार थे बप्पी लाहिड़ी। श्रोताओं को बता दें इस बार का श्रोता मंच प्रसारित नहीं होगा, जिसके बारे में कल हमने आपको बताया था बार बार इसी कार्यक्रम में कि श्रोता मंच कार्यक्रम आप सुनिए। कल हम मैच का रिले कर रहे हैं और क्रिकेट मैच हमारे सभी सुनने वालों को पसंद आता है, तो कल का श्रोता मंच कार्यक्रम आप नहीं सुनेंगे। ये थी जानकारी आपके लिए, आपको बाद में भी बताएंगे। अगला गीत आपको सुनवाते हैं स्वामी फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ आप सुनेंगे। अमित खन्ना का लिखा हुआ गीत है, संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

0: स्वामी फिल्म का गीत आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में सुना। अमित खन्ना ने इस गीत को रचा था और संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

ये आपने सुना लता मंगेशकर का गाया कर्तव्य फिल्म का गीत। गीत लिखा था कफील आजाद ने, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्मी गाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। श्रोताओं को बता दें, इस बार का श्रोता मंच कार्यक्रम आप नहीं सुन पाएंगे क्योंकि श्रोता मंच के समय पे हम रिले करेंगे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम लंदन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले ICC महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। और हमारे बहुत सारे श्रोता क्रिकेट मैच की कमेंट्री सुनना पसंद करते हैं, तो आपके लिए खास ये रिले किया जा रहा है। तो इस बार का श्रोता मंच कार्यक्रम आप नहीं सुन पाएंगे। बढ़ते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं एक बाप छह बेटे फिल्म का गीत। मोहम्मद रफ़ी और सुलक्षणा पंडित ने गाया है। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत है राजेश रोशन का।

0: ये था एक बाप छह बेटे फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ें थीं। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था राजेश रोशन का।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

लता मंगेशकर का गाया मृग तृष्णा फिल्म का ये गीत था। गीतकार संगीतकार थे शंभू सेन। अगला गीत खानदान फिल्म से आइए सुनते हैं। लता मंगेशकर ने गाया है, नक्श लायलपुरी के बोल हैं, संगीत खय्याम का।

ये था कटी पतंग फिल्म का गीत, लता मंग माफ कीजिएगा किशोर कुमार ने गाया था। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था आरडी बर्मन का। किशोर कुमार के गाए इस गीत से पहले हमने आपको सुनवाया था अमृत तृष्णा फिल्म का गीत, खानदान फिल्म का गीत था। लता मंगेशकर की आवाज़ थी, नक्श लालपुरी के बोल थे, संगीत था खय्याम का। और अब प्रेम पुजारी फिल्म का गीत सुनते हैं, किशोर कुमार की ही आवाज़ में, नीरज के बोल हैं, संगीत है एस डी बर्मन का।

जाने अनजाने फिल्म का ये गीत था, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें आपने सुनी। हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीत था शंकर जयकिशन का, और इससे पहले प्रेम पुजारी फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में गाया हुआ आपने सुना। कार्यक्रम का आखिरी गाना आपको सुनवाते हैं, फिर कब मिलोगी फिल्म से, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं इस गीत में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत है आर डी बर्मन का।

ये गीत आपने सुना फिर कब मिलोगे फिल्म से, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ें थीं। और ये था आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम का आखिरी गाना आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। 2 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, इसके बाद 2:15 पर हिंदी में समाचार आप सुनेंगे। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिलीज किए जा रहे हैं।

0: ताई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: $175 million इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 million पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
4: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है, इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
5: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों

0: लाखों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
0: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
2: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जाँच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई

0: नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेश रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि एक मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हरा कर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्क फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमरीका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप खेत खलिहान कार्यक्रम सुनेंगे।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।

0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: खेत खलिहान कार्यक्रम सुनने वाले सारे भाण भाइया ने आनंद भाई की राम राम। और भाइयों फिलहाल अपना जो टाइम है न्यू देखा है कि भाई गर्मी है और जड़े भी नहीं देखे आगे की फसल ला की भाई भाइयों ने तैयारी भी कर रखी है किते किते भाई भरिया इलाका भाई भाइयों ने प्योद बना रखी है आगे धाना की तैयारी चल रही है। और ये भी नहीं देखे कि जड़े भी ये अपना भाई खाली खेत है तो भाई कित खेत ने एक सार करवाने का काम चल रहा है कित गोड़ी का काम चल रहा है लेजर लेवलर का चल रहा है भाई कोई भाई अपने भाई जैसी भी तो डोले वगैरह बंधवाओ है तो ये तैयारी हो है कि भाई अपनी जो फसल हम ना गए बोनी है तैयार करनी है तो उसकी पूरी एक रूपरेखा तैयार करी जाए बढ़िया खेत तैयार करके बास हमार की अपने भाई देसी खादा का अगर प्रयोग हो जाए तो सब तो बढ़िया रहा इसमें वरना भाई अपने आने देखें कि जो रासायनिक खादे हैं भाई उन तो फिर पूर्ति करनी पड़े है लेकिन आजकल की जो खेती है सघन खेती है भाई आधुनिक युग है किसान भाई ने बिल्कुल सूझबूझ के साथ समझदारी के साथ अगर खेती करेगा तो इसमें थोड़ी ही बचत ठीक ले पाओगा वरना भाई आजकल देखे हैं कि महंगाई का टाइम है और भाई ठेके बटाई की अपन धरती के लिए हो जाए तो एक दूसरे ने देख के भाई खर्चा गणा कर बैठे हैं तो यह अनसमझी की बात थोड़ी किसान भाई ने वह बचत नहीं आने दें दी पीछे धकेल दे वह है तो थोड़ा भाई सूझबूझ के साथ तकनीक नहीं अपनाएं हम खर्चे कम करें इस हिसाब से हम पैदावार लेंगे जब जाके खेती बाड़ी में कह पाऊंगे कि भाई ठीक बचत हो जाए है वरना भाई एक दूसरे ने देख देख के भाई फलाने ने 4 यूरिया गेरे थे तो 5 गेर न्यू गेर तो इस हिसाब से अनसमझी के कारण एक तो खर्चे ज़्यादा ला बैठे किसान भाई लेकिन बात यह हो कि भाई सूझबूझ के साथ खेती जब हम कर रहे हैं तो बसरते खेती बाड़ी में बिल्कुल एक लेखा जोखा जिसने कहा करें कि लेखा जोखे के साथ अगर हम खेती कराएँ भाई जब शुद्ध आमदनी बचत जिसने हम कह दी है जब तक हमें बेरा नहीं पटेगा जब तक जो अपनी खेती है मुनाफा का सौदा नहीं उड़ पाओगी तो बिल्कुल ही हमें तैयारी करके चारनी है कि भाई वही खत्या का खेती बाड़ी में क्या महत्व है इस बारे में क्योंकि जब तक हम लेखा जोखा नहीं रखेंगे भाई हमारा कितने बान हुए हैं कितना डीजल लग गया है फिर भाई चाहे किराया पर हमने खेत भाड़े पर करवाया है तो कितना लग गया है और इस हिसाब से जो भी भाई लेखा जोखा है बीज इतने का आया है भाई खबात हमने इतनी कर दी इसमें लेबर इतनी लग गई है इतनी शुद्ध आमदनी हुई है यो भाव क्या है जब जाके किसान भाई ने पूरा निबेरा पाओगा कि भाई इसमें बचत कितनी है मंडी करने तक लेगी बोण तक लेगी और बिल्कुल आखिर तक हमने लेखा जोखा रखना जरूरी चाहिए। लेखा जोखे तो एक सबसे फायदा यो है किसान भाई का कि हमने आज की बारी तो भाई धान की फसल बोई है बाजरा बोया है कपास बोई है लेकिन साल दर साल किसान भाई लेखा जोखा रखेगा तो भाई भी बेरा पट जाएगा कितने सहायक धंधा था हमने की आमदनी जो है फसल का इंटरक्रॉपिंग जिस नाम बोलते हैं कि फसल के बीच में जैसे कि भाई किसान भैया ने कितना लगा ली बीच में मूंग लगा ली मिश्रित खेती हो जाए उस तो भी एक अलग आमदनी हो जाए कितने भैया नीख बो दिया ईख कम है बहुत से भाई कितने काकड़ी है कितने भाई जो देखे हैं कि टिंडा है बहुत सब्जी फसलें इस कम है ले ली हैं कई तो जब आदमी न्यू बेरा पाटा भाई किसान भाई ने कि भाई जब तीन इस कम है अलग तो आमदनी किसान भाई ले नहीं लेने पाओगा जब तक शुद्ध मुनाफा नहीं उड़ पाओगा तो पूरी जो तैयारी है भाई खेती बाड़ी के साथ साथ हम अलग तो आमदनी किस तरह ले इसके हैं तो जब तक कोई सहायक धंधाकार रोजगार किसान भाई नहीं अपना होगा जब तक इसमें चाल की मुनाफा का सौदा नहीं उड़ पाओगा तो इस तरीके से क्योंकि अपनी जो खेती बाड़ी है भाई ने भी देखा हाँ कि जिस टाइम को परे फिलहाल क्योंकि आंधी अंधड़ और कितने कितने भाई ने देखा थे बरसात भी हो रही है तो जड़े जड़े बरसात हो रही है बरानी इलाके में कितने भाई बाजरे का टाइम भी आ रहा है कितने भाई हरा चारा भी भाई लगाओगे तो जड़े जड़े बरसात हो रही है तो भाई अपने बाजरे का टाइम है भाई किसान भाई उसकी तैयारी करें बढ़िया किस्मत चुनाव करें ठीक खेत ने अपने बास मार की तैयार करें जब जाके थोड़ी ही ठीक आमदनी ले पाओगे किसान भाई। और भाई जब फिलहाल ने देखा है कि जो टाइम अपना आंधी अंधड़ का तो जो भी बाग किसान भाइयों लगा रखी थी क्योंकि जो नए बाग लगाए हैं उनकी देखभाल भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि न्यू देखा हाँ कि चाहे वो छोटे बाग हों चाहे बड़े बाग हों इस टाइम के ऊपर बहुत से बागा में चाहे वो जामुन की बात कर रहे हैं चाहे वो अमरूद की बात कर रहे हैं तो भी इसमें काफ़ी फल झड़ गया था क्योंकि आंधी अंधड़ की बार इतनी तेज आए हैं कि फल तो में काफ़ी नुकसान हुआ है चाहे वो सब्जी फसल की बात कर रहे हैं चाहे फिर

दिनचर्या में भाई कोई अपने जो बाग लगा रखे थे कई साल पुराने बाग हैं तो उस हिसाब से भी देखभाल करनी जरूरी है। कितने कटाई छटाई का काम है, कितने निराई गुडाई का काम है, तो ये अपने दिनचर्या के काम हैं, ये चाल दे रहे हैं। तो बात थोड़ी रटकी करांगे भैया, तो एक राग नहीं सुनवा दे। हाँ, राय कलाकार इसमें रहेंगे सतबीर सलानिया।

तो ये सुनी बहन रागनी सतबीर सलानी है कि एक रागनी भैया और सुनाओगे, लेकिन अपना जो खेती बाड़ी में जिक्र चल रहा था तो ये देखें कि जो भी अपनी खेती बाड़ी के दिनचर्या के काम है, वही चाहे वो आगे चल के कोई फसल है, लेकिन अपना जो जिक्र था भाई फूल पौधा का अपना, तो जिन भाई

नए नए बाग लगा रखे हैं, खास तौर पे भाई चाहे वो नींबू का हो, अंगूर का हो, बेर का हो, अमरूद का हो, चाहे आड़ू का हो, चाहे आम का, अभी न्यू रखे हैं कि दिनचर्या में अपना भाई चाहे नींबू की अगर बात करा तो नए पौधा ने भाई गर्मी से बचाने के लिए पुराने पौधा ने तना पड़ते हैं लगभग 3 किलोग्राम चूना में 2 किलोग्राम नीला थोथा मिला की 30 लीटर पानी में अलग अलग भिगो की और वह छाण की मिला की लेप कराम, ताकि जो सूरज की जो तेज रोशनी है वह तने ने आनी ना पहुंचावे। और यो बोले अपना हर बार ताज़ा बना की प्रयोग में हमने लेना है। इसके अलावा वही सिंचाई भी कर दे रहना है, सिंचाई के बाद में मल्चिंग अवश्य जरूर करनी है हमने। जस्ते की कमी अगर लग गए है तो भाई फल गिरने से बचाने के लिए भी 5-1 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 2.5 किलोग्राम बुझाओ चूना 1,000 1 लीटर पानी में घोल बना के हमने पौधा पर छिड़काव करना है। और इसी प्रकार भाई नाइट्रोजन की कमी के लक्षण अगर दिखाई दे हैं तो पूरा करने के लिए भाई 1 तले की 2 किलोग्राम यूरिया और 100 1 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव हमने करना है। पत्ते में लीफ माइनर की अगर नियंत्रण के लिए भाई 625 मिलीलीटर इसमें डाइमेथोएट या फिर रोगोर 30% ताकत की दवाई रहेगी, या 500 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव हमने कर देना है। नए और छोटे पौधा ने लू तो जरूर बचा, हम नियमित सिंचाई कर दे रहा, उचित नमी बागाम जो हमने बना की रखनी है। अंगूर की अगर बात करा हाँ तो भाई नई या फिर 1 साल पुरानी बेला में 25 से लेकर 30 ग्राम यूरिया प्रति एक बेल के हिसाब से हमने हर दूसरी सिंचाई पर देने रहता है, और सिंचाई भी करते रहवा ताकि फालतू बढ़वार रुक जावे इसमें। और बेला की सिंचाई भाई लगभग 10 दिन के अंतराल पर हमने कर दे रहना है, लेकिन जब फल तोड़ना शुरू करा तो भाई सिंचाई करना हमने बंद कर देना है, और फल खत्म होने पर सिंचाई हमने जरूरी करनी है, पानी जरूर देना है। पुरानी बेला में जो ला फल लाग रहे हैं भाई, जैसे कि चिचड़ियाँ ते बचानी और पक्के फलों ने गुच्छा गए सावधानी पूर्वक तोड़ के हमने मंडीकरण करना है, बाजार भाव में बेचनी है, और छटनी करके हमने इसमें पैकिंग करनी है ताकि किसान भाई ने जो है बाजार भाव इसमें ठीक मिल पावे। थ्रिप्स के लिए भाई 500 मिलीलीटर इसमें मेलाथियन का प्रयोग हम कर सके हैं अगर थ्रिप्स की बीमारी दिखाई दी है तो, या 50% ताकत की दवाई रहेगी 150 मिलीलीटर इसमें फेनोल रेट का इस्तेमाल कर सके हैं। फेनोल रेट है या 20% ताकत की दवाई रहेगी और इसमें 500 लीटर पानी मिला के प्रति 1 किलो के हिसाब से हमने जो है छिड़काव करना है। इसी तरीके से भाई बेर की अगर बात करा हाँ तो इस महीने के दूसरे सप्ताह तक बेर की भाई कटाई छटाई का काम जो है पूरा हो लेना चाहिए, और पौधा की छतरी तक हमने निराई गुड़ाई जो है करनी है। जहाँ तक भी छतरी फैल रही हो तो उसके नीचे भाई हमने निराई गुड़ाई जो खरपतवार है उसका नाम निकाल देवा, और प्रति पेड़ के हिसाब से लगभग 100 किलोग्राम इसमें गोबर की पुरानी गलीसड़ी जो खाद है उसका प्रयोग जो हम कर सके हैं। इसके अलावा फिर इसमें हमने सिंगल सुपर फास्फेट 250 किलोग्राम अच्छी तरह से मिला के गहरी सिंचाई हम जरूर कर देनी है, 72 रन पर गहरी जुताई हम करें। अमरूद की अगर बात करा हाँ तो भाई नए पौधे में गर्मी और लूते बचाने के लिए भाई सिंचाई हमने जरूर करनी है, इसमें एक बार जरूर हमने पानी इसमें जरूर देवें, और पौधे की सूखी जो शाखाएँ हैं इसमें तो निकाल देवा। फल मक्खी के लिए भाई इसमें फिरोमोन ट्रैप का प्रयोग जरूर करा, और आड़ू की बात आओ तो भाई इस महीने का पहला सप्ताह तक भाई शरबती और मैचलेस जो किस्म के फल हैं उन्हें पकने शुरू हो जाएंगे, इसलिए भाई उनकी तुड़ाई का प्रबंध हमने करना है, हल्की सिंचाई करनी है इसमें, और तुड़ाई तो पहले सिंचाई हमने बंद कर देनी है। नए पौधे की जो तने हैं उनके साथ साथ हमने मिट्टी चढ़ानी है। आम की बात आओ तो भाई इसमें बागा की सिंचाई नियमित रूप से हमने कर दे रहना है, छोटे पौधे ने गर्मी और लू से बचाना है। नाइट्रोजन की बाकी जो बची मात्रा अगर पिछले महीने नहीं दियो तो इस महीने में हमने देनी है, पके हुए फलान की ग्रेडिंग करके हमने बाजार में भेजें। और जिन भाइयों ने बिल्कुल ही नए पौधे लगा रखे हैं तो भाई हमने 1 हफ्ते तक जो है पानी इसका में नियमित तौर पर रोज देना है, दूसरे हफ्ते में फिर 1 दिन छोड़ के भाई जब आ जाए। और इसी तरीके से जो पानी देने का न्यू है भाई 7 दिन आते ही अगर बारिश ना हो रही हो तो पहला हफ्ता रोज देवा, दूसरा हफ्ता में 1 दिन छोड़ के हम देश का हाँ, तीसरा हफ्ता में बात आओ है तो भाई हफ्ते में 2-3 लेकिन 3 बार पूरा भरपूर मात्रा में हमने पानी देना, ताकि जो

जड़ हैं वगैरह ही तक चली जाएं। ध्यान रखें कि भाई पानी जो हो पत्तियाँ की बजाय हमने लगभग हमेशा जो पौधे की जड़ा पर देना चाहिए। मल्चिंग की बात आओ तो भाई पौधे में नमी बनाए रखने खातर खरपतवार घास फूस हमने नहीं होने देना है, रोकना है। निराई गुड़ाई नियमित रूप से हमने कर दी रहनी है और मिट्टी की सतह पर सूखी जो पत्तियाँ हैं लकड़ी के बुरादा या फिर कंपोस्ट की 2-3 इंच मोटी जो परत है वो हमने बिछा के चालनी है। तने और मल्च के बीच में थोड़ी जगह छोड़ दें ताकि पौधे सांस ले सकें इसमें। तो ये कुछ एक बातों का ध्यान रखेंगे तो चाहे वो पौधे हो फल फूल हो अपना ठीक चल लेंगे। तो भैया नहीं करा के नहीं और सुनवा दें गायक एक बार फिर सतवीर सलानिया।

रोशनी की जली की चहक मैक सपने और जल गर्म मिलेगा तेल मसले के नाया।

या तो सुनी भैया ने रागनी सतवीर सलानिया की गाई हुई और देख लें भैया घड़ी का निशी के साथ ही खेत खलिहान कार्यक्रम का समय पवरिया समाप्त। चल लेंगे सारे भण भैया ने। राम राम।

आपने खेत खलिहान कार्यक्रम सुना। मीडियम वेव 282.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर डीटीएच और न्यूज़ ओन एआईआर पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारे दूसरी सफा के कार्यक्रम अब खत्म होते हैं। एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले। तीसरी सभा में आज शाम 5:10 पर मीडियम वेव 262.47 मीटर डीटीएच और न्यूज़ ओन एआईआर पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी कि 1143 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सायंकाल के 5:09:40 हुए हैं। अब हमारे आज के विशेष सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जा रहा है।

0: आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल, गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे हैं इस विशेष पहल के पीछे काम करने वाले रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आलोक शुक्ल।
2: श्रोताओं नमस्कार। आजकल आप आम देख रहे हैं कि हर चीज में पानी की बोतल लेना हो या कोई भी अन्य पदार्थ लेने हो तो प्लास्टिक की बोतलों में होते हैं या किसी इसी प्रकार के रैपर वाले में उन्हें पैक किया जाता है। तो इससे होने वाला प्रदूषण जो है वो एक बड़ी समस्या है, लेकिन भारत देश के एक छोटे से शहर अंबिकापुर में इस प्रदूषण से निपटने के लिए एक अनोखा उपाय किया गया। इस उपाय में एक अपील की गई कि जो भी यहाँ पे आए, हम उनके लिए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, प्लास्टिक के जो कचरे हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं प्लास्टिक के जिससे प्रदूषण फैलता है, वो उसे अंबिकापुर के बस स्टैंड में वहां पे लाएं, गौरव पथ पे जो बना हुआ है, और उसके बदले 1 किलो यदि वो कचरा लाते हैं तो उसके बदले उन्हें भरपेट खाना मिलेगा, 1/2 किलो लाते हैं तो उन्हें नाश्ता मिलेगा, खाने में भी क्वालिटी अच्छी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे की गई एक पहल है जो पूरे देश में प्रचारित हुई। और सबसे बड़ी बात है कि अंबिकापुर शहर की ये जो पहल है, इसका उल्लेख हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में किया। तो हम बात कर रहे हैं रितेश सैनी जी से। तो सैनी जी, आप ये बताइए कि नगर निगम में जिस तरीके से ये हुआ, तो ये क्या, इसके पीछे की अवधारणा क्या थी, कैसे ये विचार आया?
3: जी देखिए, अंबिकापुर नगर निगम में हम लोग वर्ष 2014 से ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कार्य कर रहे थे। इसके अंतर्गत अंबिकापुर नगर निगम में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज मॉडल अपनाया, मतलब शहर में जो कचरा उत्पन्न हो रहा है उसको किसी एक स्थान पे ला करके प्रोसेसिंग करना एक कठिन काम था, तो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस काम को करें। इसके तहत SLRM प्रोजेक्ट अंबिकापुर में लगाया गया। वहां पे दीदियां जो है वो घरों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण करती है। कचरा को संग्रहण करने के बाद SLRM सेंटर में आता है, जहां पे कचरे का अलग अलग श्रेणी में पृथक्करण करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, पेपर हो, कार्डबोर्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या हजार्डियस वेस्ट हो, तो सबका वहां सेग्रीगेशन होता है। और सेग्रीगेशन होने के बाद उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए उसको वेंडर्स को सेल किया जाता है। प्लास्टिक वेस्ट एक जो बहुत बड़ी समस्या थी, तो अंबिकापुर नगर निगम में जो SLRM सेंटर है उनसे जो प्लास्टिक संग्रहित होकर के आ रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली अलग अलग जो श्रेणी होती है प्लास्टिक की उसमें पृथक्करण करते हैं। पृथक्करण करने के बाद उसकी वाशिंग होती है, वाशिंग होने के बाद उसका दाना बनाने की मशीन जो प्लास्टिक का ग्रेनुअल्स बनता है, ताकि हम उस प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकें। प्लास्टिक को जितना ज्यादा अपन रिसाइकल कर पाएंगे वो सर्कुलर इकोनॉमी की ओर एक हमारा अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। वो प्लास्टिक रिसाइकल होने के लिए दाने का मशीन हमने लगाया। दाना बनने के बाद जो प्लास्टिक के उत्पाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हमसे उस दाने को खरीद रही हैं। तो इतनी व्यवस्था जब बन गई तो उस प्लास्टिक

0: वैल्यू आई। जैसे ही हमने दाना बनाना शुरू किया, दाना बनाने के बाद हमको जब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे जब रेट्स मिलना शुरू हुए, तब हमको ये समझ में आया कि इस प्लास्टिक को दाना में कन्वर्ट करने के बाद 30 रुपये से लेकर 60-70 रुपये किलो तक बेचा जा सकता है। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया, या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है। गार्बेज कैफे में ये होता है कि लोग अपने घरों में या दुकानों में जो काम करने वाले वर्कर हैं या जो रैक पिकर्स हैं, वो अच्छी साफ क्वालिटी की प्लास्टिक इकट्ठा करके ला रहे हैं, तो हमारा पृथककरण का खर्चा बचा। जो हम लेबरों से अलग अलग प्लास्टिक को कराते, वो प्लास्टिक को अच्छे से इकट्ठा करके हमारे पास ला करके दिया, तो साफ सुथरी अलग की हुई प्लास्टिक हमको मिल गई, तो वो जो प्रोसेसिंग कॉस्ट था वो हमारा खत्म हो गया। चूंकि हमारे पास प्लास्टिक के एंड पॉइंट तक का मैकेनिज्म है, वो प्लास्टिक को हमने सीधे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, हमारा जो दाना बनाने की फैक्ट्री है वहां पर डाल दिया, जो दीदियां काम करती हैं, दाना बन गया, उसकी वैल्यू लगभग 20 रुपये के आसपास हमारे पास आ जा रही है। अब हमने अंबिकापुर में ये गार्बेज कैफे स्टार्ट किया, क्योंकि ये बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे है। बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे होने के कारण क्या होगा कि अधिकतर लोगों के अप्रोच में है। बस स्टैंड के जस्ट सामने में हमारा एक अलार्म सेंटर है। क्योंकि प्लास्टिक घरों से लाया हुआ है या सड़कों से लाया हुआ है, गंदा हो सकता है, रेस्टोरेंट में हाइजीन को भी मेंटेन करना है, तो प्लास्टिक लेके रेस्टोरेंट में नहीं आना होता है। जस्ट रेस्टोरेंट के सामने में रोड के उस साइड हमारा अलार्म सेंटर है, वहां पे जाते हैं, वो प्लास्टिक को डिपॉजिट करते हैं, उसका वजन होता है, वजन होने के बाद उनको दीदियां टोकन इशू कर देती हैं, उस टोकन को लेकर के आपको गार्बेज कैफे में आना है। ये जो टोकन है उसकी वैलिडिटी 7 दिन की होती है। ऐसा नहीं कि आप आज लिए तो आज ही आपको उसको खाना ही है, आप 7 दिन के अंदर कभी भी आकर के उस टोकन को यहाँ जमा करिए और यहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट जो चला रहे हैं वो उसके बदले में उनको भरपेट भोजन कराएंगे।
1: ये इस योजना की गार्बेज कैफे की जो शुरुआत हुई वो हुई 2019 में।
0: यस।
1: उस समय कुछ दिक्कतें आई शुरू करने में, या लोगों के जो विचार थे वो कैसे थे, उन विचारों को आपने सकारात्मक रूप में कैसे परिवर्तित किया, ये बताएंगे सैनी जी आप।
0: इसमें देखिए क्या हुआ था कि 2019 में इसका जो शुरुआत करने का प्रक्रिया हुआ था, तो एक हम लोग एक आईसी एक्टिविटी के अंतर्गत बस स्टैंड परिसर में ही साफ सफाई का एक महाअभियान का आयोजन हम लोगों ने उस दिन किया था। तो जब साफ सफाई का महाअभियान किया गया तो उसमें हमारे महापौर हो गए, नगर निगम के अधिकारी गण हो गए, सारे लोग यहाँ पे थे, और सफाई कर्मचारी लोग उसमें स्वीपिंग करके प्लास्टिक के कचड़े को, अन्य सभी कचड़ों को इकट्ठा कर रहे थे। तो वहां पे एक बात आई कि क्या इस कचड़े के बदले में हम लोगों को कुछ इंसेंटिव मिल सकता है क्या। तो उस समय जो अधिकारी गण थे उन लोगों ने कहा कि यदि आप इस जो सबसे अच्छा प्लास्टिक इकट्ठा करके लाएगा उसको आज मेरी ओर से खाना। तो इस तरह से एक चीज समझ में कि नहीं ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। फिर दूसरा इसको आगे बढ़ने का हमने इसलिए उम्मीद किया क्योंकि प्लास्टिक की वैल्यू हमको ये समझ में आ गई कि जब अगर प्लास्टिक का प्रॉपर आपके पास सेग्रीगेशन है, आपके पास दाना बनाने की मशीनें हैं और आपके पास वेंडर हैं, आप प्लास्टिक को कहाँ बेच सकते हैं, सही मूल्य अगर अपने को मिल रहा है तो हम इसको सस्टेन कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए 1 किलो प्लास्टिक जो सामान्य रूप से कोई 2 रुपए किलो में बेच रहा होगा, हमारे पास आके प्रोसेस होकर 30-40 रुपए किलो में जा रही है, सारे खर्चों को काट करके अगर 1 किलो प्लास्टिक में 20 रुपए भी मेरा बच रहा है तो उस 20 रुपए में इस रेस्टोरेंट वाले को दूंगा। ये रेस्टोरेंट प्राइम लोकेशन पे है, यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो खाने आते हैं उनके अलावा अन्य जो यात्रीगण आते हैं उनको भी ये खिला सके, इसलिए उनकी ओर से भी क्या कंट्रीब्यूशन हो सके।
1: ये माने ऐसा नहीं है कि खाली जो कचरा लेके आ रहे हैं उनके लिए, ये सभी के लिए है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो उसके लिए भी एक रेट है,
0: उसके लिए यहाँ पे रेट है, आप पैसा देके भी खा सकते हैं और जो गार्बेज कैफे में जो प्लास्टिक जमा करके टोकन ला रहे हैं वो भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे टोकन वालों के साथ कोई भेदभाव ना हो, कि ऐसा ना हो कि इनको हमने दे दिया और ये केवल जो पैसा दे रहा है उसको पहले दें, टोकन वालों को बाद में दें, तो इसके लिए हम लोगों ने इनके साथ एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि 2 सीट हमेशा, 2 टेबल मतलब 8 व्यक्तियों के बैठने की जो अरेंजमेंट है वो हमेशा रिजर्व रहेगा। क्योंकि ये संभावना है, हो सकती है ऐसी संभावना कि वेंडर ने तो कम रेट पर ले लिया इसको और उसने कहा कि 20 रुपये मेरे को आप टोकन का रिडीम आप करेंगे, बाकी कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। तो उस समय ऐसी परिस्थिति ना बन जाए कि केवल बाहर वाले लोगों को ही वो खिला रहा है, जो टोकन लेकर के आ रहे हैं वो या तो सड़क से कचरा बीनने वाले होंगे या कुछ होंगे, तो उनके साथ भेदभाव हो, ऐसी स्थिति ना बने। तो इनको ये कहा गया कि आपको 2 टेबल रिजर्व रखना है, आप कभी भी मतलब उनको वापस नहीं भेजोगे।
1: आप ये बताइए कि इसमें से प्रतिदिन कितना आय हो जाता है यहाँ पे।
0: जब देखिए हमने इस गार्बेज कैफे की शुरुआत की थी तो शुरुआत के 1-2 महीने में तो दो तीन लोग आ रहे थे, उसके बाद फिर काफी अच्छा लोगों यहाँ आना शुरू किया, 15-20 टोकन 30 टोकन 40-50 टोकन तक पर डे जाना शुरू हुआ। अभी भी मतलब हर दिन लगभग 8-10 टोकन कंटिन्यूअसली आते जाते हैं। कई बहुत अच्छे इसमें आप एग्जांपल भी देखेंगे कि एक रैक पिकर है जो दुकानों से, मार्केट जब बंद होता है तो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो प्लास्टिक इकट्ठा करके आता है यहाँ पे जमा करता है, जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो और टोकन इकट्ठा करता है। तो उसने एक बार रिक्वेस्ट किया था कि सर 1 टोकन मिलता है मान लीजिए मेरे को, तो मैं अकेले खाना चाहता हूँ, क्या मैं 3-4 दिन इकट्ठा करके 5-7 टोकन कर लूं और अपने परिवार बच्चे लोगों को लेकर के आ जाऊं, तो एक मेरे बच्चे लोगों को मैं कभी रेस्टोरेंट नहीं ले जा पाता है ना, तो ऐसा क्या मैं कर सकता हूं। तो उसके लिए फिर आयुक्त महोदय का बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, 7 दिन टोकन की वैलिडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट आया, पहले तो एक ही दिन था कि आज आप लोग जाओ खाओ चले जाओ, फिर उसमें उन्होंने कहा कि नहीं 7 दिन तक आपका टोकन वैलिड रहेगा।
1: जो गरीब परिवार है खासकर जो कचड़े का जो संग्रह करते हैं, जो प्लास्टिक को बीनते हैं, जो हमें प्रदूषण मुक्त समाज की एक मुख्य अवधारणा है, जो गरीब तबके के लोग जो संग्रह करते हैं उनके लिए देखिए कितनी अच्छी पहल है।
0: होटल वाला भी ये करता है कि आप बच्चे का यदि चाउमीन खाने का मन है, इडली खाने का मन है, तो जरूरी नहीं कि आलू

0: वरना समोसा ही आप खाइए, आप दो टोकन दे दीजिए तो उसके बदले में। तो ये हो गया कि मतलब वो भी अब अपने फैमिली को रेस्टोरेंट लेकर के आ सकता है और सम्मान से बैठ करके खा सकता है। तो ये इस तरह के भी कुछ एग्जांपल्स इसमें निकल करके आए हैं। तो ये एक अच्छा हमको हुआ कि प्लास्टिक तो आ ही रहा है, ऑलरेडी हम लोग घरों से भी प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन में प्लास्टिक मिल रही, सारे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एक मोड ये भी है कि इसके माध्यम से प्लास्टिक भी हमको मिल जा रहा है और साफ सुथरी प्लास्टिक जहां प्लास्टिक को जाना चाहिए, जो उसका वैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम डिस्पोजल कर पा रहे हैं।
1: ये जो पानी भी आप देते हैं तो स्वच्छ पानी
0: जी
1: वो लोगों को उपलब्ध कराते हैं,
0: स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पे आरओ भी लगा हुआ है इनके पास, इसके अलावा ये वाला बॉटल भी, मतलब कि ऐसा कोई अनहाइजीन सिचुएशन यहाँ ना क्रिएट हो, उन सब चीजों का स्पेशल ध्यान भी इनके द्वारा।
1: सनी जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इस पहल को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में पूरे देश के समक्ष किया, प्रभाव ये पड़ा कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई, और कोई शहर महानगर इस अवधारणा को स्वीकार करते हैं और आपसे सहयोग चाहते हैं?
0: बिल्कुल,
1: या ऐसा कोई मामला सामने आया, ऐसा कोई विषय सामने आया कि जो और कोई शहर के भी लोग आपसे कांटेक्ट किए हैं?
0: जी बिल्कुल, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और दिल्ली में शायद 27 या 28 गार्बेज कैफे आज के डेट में हो चुके हैं। तो 2019 में जब हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था तो 21 संभवतः दिसंबर के आसपास दिल्ली से यहाँ एक्सपोजर विजिट के लिए भी आए थे, वहाँ पे दिल्ली में भी उन्होंने गार्बेज कैफे चालू किया है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ ऐसे शहर हैं जो गार्बेज कैफे के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमसे ली, यहाँ तक कि जो हमारे CAG होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो जब इस डिपार्टमेंट को पता चला कि ऐसा कोई इनिशिएटिव चल रहा है तो फाइनेंशियल इसके क्या सिचुएशन है, क्या ये सस्टेन हो पाएगा, कि या इसको सब्सिडाइज करके करना है और जगहों पर लागू करना, तो CAG ने भी इस पर विस्तृत हम लोगों से पूरा जानकारी लिया और पूरा ऑडिट किया इन सारे चीजों का कि कैसे कैसे होता है, कैसे टेंडर किया गया, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे। तो CAG ने भी इन सब चीजों को ऑडिट करके आगे लोगों के लिए एक मॉडल के रूप में, गाइडलाइन के रूप में गार्बेज कैफे का दिया हुआ।
1: गार्बेज कैफे का जो सबसे अधिक लाभ, या कहें कि ये जो पहल आपने की, सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिला, किसे मिला, समाज के किस तबके को मिला?
0: समाज के उस तबके को मिला जो ऑलरेडी प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं, अब पहले भी करते थे, रैक पिकर लोग अभी भी दुकानों से ले रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में आया कि मैं दिन भर इकट्ठा करके, क्योंकि एक किलो बोलने में बहुत हमको हल्का लगता है, लेकिन जब आप प्लास्टिक की बात करेंगे, एक किलो लोहा और एक किलो प्लास्टिक बहुत अंतर होता है। एक किलो प्लास्टिक जब हम इकट्ठा करने जाएंगे तो पता चलेगा आधा बोरा भर गया, और साफ सुथरी प्लास्टिक लानी है। इसमें हम लोग एक ये भी करते हैं कि प्लास्टिक आपको कौन सी लानी है कि आप यूज करें। मेन हमारा ये इनिशिएटिव है कि सड़कों से उठाना या नालियों से उठाना वो नहीं है, प्लास्टिक को आप फेंकें ना, आप प्लास्टिक का यूज कीजिए, आप प्लास्टिक को स्टोर कीजिए, एक किलो हो गया गार्बेज कैफे में डिपॉजिट कीजिए, टोकन लीजिए, खाना खाइए।
1: तो ये दिन पे दिन ये जो प्लास्टिक संग्रह है बढ़ रहा है?
0: नहीं,
1: क्या है,
0: प्लास्टिक संग्रहण तो बढ़ रहा है, देखिए प्लास्टिक कचरे में वृद्धि भी हो रही है, प्लास्टिक के अल्टरनेट भी अब आते जा रहे हैं, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं मार्केट में हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचरे का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे बहुत सारे चीजों में हम देख रहे हैं कि डिस्पोजेबल आइटम जो है वो अल्टरनेटिव आना शुरू हो गए, जैसे जो कागज की प्लेट्स आती थी अब वो प्रेस मड की प्लेट आ रही है, मतलब वो गन्ने से बना हुआ प्रेस मड है जो डिस्पोजेबल हो सकता है, जिसका हम लोग खाद बना सकते हैं,
1: जैविक है,
0: जैविक है वो, ऑर्गेनिक है वो।
1: और बड़ी बात सामने आ रही है कि जो प्लेटें जो पहले प्लास्टिक की रहे या थर्मोकोल की रहती थी, अब लेकिन वो जो गन्ने के छिलके से बनी प्लेटें हैं, ये बता रहे हैं कि वो ज्यादा आ रही हैं, और वो क्या होती हैं कि वो नष्ट भी हो जाती हैं प्राकृतिक रूप से, क्यों, क्योंकि पूरी तरीके से जैविक होती हैं। क्या क्या चीज आप यहाँ पे देते हैं?
0: यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो आते हैं उनके साथ साथ जो पब्लिक बस स्टैंड में आ रहे हैं यात्रीगण, उन यात्रीगणों के लिए भी यहाँ पे सुविधा है। तो यात्रीगणों के आधार पे वेंडर को जो लगता है कि यहाँ पे जैसे गर्मी का सीजन है तो लस्सी होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए, या लंच में और कुछ कुछ आइटम है, तो सारे आइटम ये बनाते हैं। तो जो गार्बेज कैफे का मेनू है तो फिक्स है कि उसमें आपको खाने में क्या क्या देना है, नाश्ते में क्या क्या देना है। उसके अलावा जो अलग से आ रहे हैं यात्रीगण वो जो यहाँ अवेलेबल है उस ऑर्डर देकर के ले सकते हैं।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया
0: जी,
1: उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा गार्बेज कैफे में?
0: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि एक तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए, कुछ पहले भी चल रहा था अंबिकापुर में, लेकिन मन की बात में आने के बाद और लोगों को पता चला कि गार्बेज
1: कैफे पड़ा,
0: बिल्कुल असर
1: वृद्धि हुई है,
0: उससे भी वृद्धि हुई है। दूसरा इनके प्रति सपोर्ट भी पड़ा कि एक हमारे शहर की का जो एक सम्मान की बात है कि शहर के बारे में प्रधानमंत्री जी अगर चर्चा कर रहे हैं, तो उससे लोगों के मन में भी एक आया कि नहीं ये अच्छी इनिशिएटिव, इसको और बढ़ाना चाहिए। ये भी बात आई कि शहर के और दूसरे हिस्सों में भी हम चाहें तो अगर स्पेस अवेलेबल हो तो चालू कर सकते हैं इसको, ना केवल प्लास्टिक, अगर और भी कुछ इनिशिएटिव करना चाहे तो उस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं आगे चल करके।
1: मैं देख रहा हूँ कि अगल बगल भी होटल हैं, कई जो पुराने होटल हैं बड़े होटल वो स्थापित हैं, उसके बाद भी आपका ये अच्छे से चल रहा है होटल, तो जनता का जो भरोसा है, जो एक कई सामाजिक जो मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हें भी एक भरपेट भोजन मिल जाता है, कि या कहें कि एक ऐसे शहर में आके कि कचरा इकट्ठे कर लो तो उन्हें खाने के कम से कम दिक्कत नहीं होती।
0: सबसे बड़ी बात यह होती है कि उनके मन में एक तो जो हेजिटेशन रहता है ये रेस्टोरेंट में कैसे जाएंगे या क्या करेंगे, जब उनको पता चला कि ये रेस्टोरेंट हमारे ही लिए बना है, गार्बेज लाना है, गार्बेज देकर करना है, तो एक उनका भी हेजिटेशन भी वो हो रहा है। दूसरा चीज, रेस्टोरेंट को मेंटेन रख रहे हैं वेंडर, नगर निगम से भी निरीक्षण हो रही है, पूरा हाइजीन मेंटेन रख रहे हैं,

0: आप सफाई मेंटेन रखना है सारा चीज, तो यहाँ पे खाने में किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है कि किसी प्रकार की कोई गंदगी है, किसी प्रकार की कोई यहाँ पे समस्या आ रही हो, तो वो सब चीजें नहीं।
1: तो अब एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए, एक आजकल इकोनॉमिक युग है, तो दिन पे दिन इससे लाभ बढ़ रहा है, उसका क्या अनुपात है आप बताएंगे पहले में और अब में?
0: इसका जो इकोनॉमिक व्यू है गार्बेज कैफे संचालन का, एक तो ये दृष्टिकोण है कि प्लास्टिक हमारे पास आ जाए और रिसाइकलिंग हो जाए और उसको व्यक्ति को भोजन मिल जाए। शुरू में तो हम इसको सब्सिडी में चलाने का हम लोग को लग रहा था कि इसमें नगर निगम को हर टोकन पे कुछ पैसा हम लोग को पे करना पड़ेगा। तो इसमें हमने क्या किया कि एक तो ये प्राइम लोकेशन है, यदि इसको हम लोग बिड करते, टेंडर करते, कोई बड़ा व्यापारी इसको लेता तो काफी पैसे में ये बिक्री हो सकती थी। तो इसका एक सब्सिडाइज रेट हमने रखा कि जो गार्बेज कैफे लेगा उसमें सबसे ज्यादा हमको ये लिख करके कौन देगा कि सबसे मैं कितना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं। अगर मान लीजिए एग्जांपल लूं कि 40 रुपए की प्लेट है, तो 40 रुपए की प्लेट में मैं कितना छूट दे सकता हूं, ये बिड का आधार था। ना कि ये बिड का आधार था कि मैं 5 लाख की दुकान को 15 लाख में लूंगा, ठीक है। तो वो हम लोगों ने फिक्स किया था कि भाई यहां पे आपको केवल और केवल 5 लाख रुपए का जो प्रीमियम है वो देना होगा, और जो मंथली रेंट है ना, क्योंकि आर्थिक नुकसान भी निकाय को नहीं होना चाहिए, तो जो मंथली रेंट है वो दूंगा, लेकिन प्रीमियम बिड को हम लोग फिक्स कर दिया था। उसकी जगह हम लोगों ने ये बिड रखा था कितना डिस्काउंट देंगे, तो जैसे इन्होंने 50% का डिस्काउंट दिया कि यदि मेरी भोजन की प्लेट 50 रुपए की है तो 25 रुपए का कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। इसने मैक्सिमम लिमिट भी दिया कि एक दिन में अधिकतम 30-40 लोग तक का मैं करूंगा, उसके ऊपर होगा तो आपको फुल पे करना होगा, ये उन्होंने दे दिया। दूसरा, प्लास्टिक जो हमारे पास आ रहा है हम उसकी वैल्यू देख रहे हैं कि अगर साफ सुथरी प्लास्टिक मेरे पास आती है जिसमें मेरा कलेक्शन का जो खर्च है, छांटने का जो खर्च है, लेबर कॉस्ट, उन सारे खर्च को काटने के बाद सीधा प्लास्टिक मेरे पास ऐसा आ रहा है कि उसको उठा करके सीधे दाना बनाने वाले सेंटर में भेजना है और वो सीधे दाना बन जाएगा, तो दाना बनाने के बाद मेरी जो वैल्यू आ रही है प्लास्टिक की वो भी लगभग 20-22 रुपए आ जा रही है। अगर साफ सुथरी प्लास्टिक हमको मिल रही है तो 20-22 रुपए वहां से बच गया, कुछ इन्होंने सबमिट कर दिया, तो ये जो टोकन हमको जमा कर रहे हैं उसका 50% हम पे कर देते हैं, 50% ये डिस्काउंट कर दे रहे हैं।
1: तो संक्षेप में ये बताइए कि एक जो अनुपात है, लाभ का अनुपात दिन पे दिन बढ़ रहा है?
0: नहीं, लाभ और नुकसान दोनों इसमें नहीं है। मतलब ये एक अच्छी योजना चल रही है, नगर निगम को लोगों के टोकन पे कोई ना लाभ है ना कोई नुकसान है, बिल्कुल बराबर पहुंच चुके हैं हम लोग। निगम को लाभ क्या है, जो प्रति माह ये किराया दे रहे हैं, क्योंकि अपना रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, तो निगम को जो प्रति माह ये किराया पे कर रहे हैं वो निगम की आय है, राजस्व इस गार्बेज कैफे का।
1: और सबसे बड़ी बात है कि जो आम जन है, आम यात्री हैं, हाँ, उनके बल पे ये
0: बिल्कुल चल रहा है,
1: बस चल रहा है, बस स्टैंड है। तो ये जो योजना है, ये जो एक पहल है, एक छोटे से शहर से निकलकर दिल्ली में बता रहे हैं अनुकरण करके वहां पे 21
0: यहाँ 21 लोकेशन पे ऐसा
1: 21 लोकेशन पे गार्बेज कैफे दिल्ली में हो गए, और भी जगह ये धीरे धीरे फैल रहा है।
0: बिल्कुल जानकारी।
1: छत्तीसगढ़ में कितनी जगह है?
0: छत्तीसगढ़ में तो अभी अंबिकापुर में।
1: तो आप देख रहे हैं कि जो रितेश सैनी जी हैं, जो इसके इंचार्ज हैं, ये बता रहे हैं कि ये अंबिकापुर जो छोटे से शहर से 2019 से ये पहल शुरू हुई, आगे और इसे उन्नत रूप देने के लिए और क्या क्या योजनाएं हैं आपकी?
0: अभी हम लोग इसमें जैसे जैसे रिसाइकलिंग बढ़ती जा रही है, हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे इतने साल से काम कर रहे हैं, तो नगर निगम अंबिकापुर एक अनुभवी नगर निगम हो गया है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ की स्वच्छता दीदियां हैं, उनका जो योगदान है, मतलब वो घर घर जाकर डोर टू डोर कलेक्शन कर रही है और इस गुणवत्ता के कचरा को लेकर के आ रही है कि एकदम साफ सुथरा। सपोज दैट अगर अभी हम और आप एक बॉटल में पानी पिए और वो बॉटल इतना फ्रेश है कि हम लोग पानी पी रहे हैं मुंह लगा करके, और उसको अगर हम एक सही ढंग पे सही तरीके से रख देंगे तो उतना ही साफ स्वच्छ रहेगा जितना खाते वक्त था। तो उस स्तर का कचरा अब हमारे पास आ रहा है दीदियों के माध्यम से। तो अब हम लोग ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि क्या और ऐसा कचरा क्या है जिसकी वैल्यू अच्छी हमको मिल सकती है। तो हम सिटीजन्स के लिए भी कुछ ऐसा और ला सकते हैं कि अगर इस कचरे को आप स्टोर करके साफ सुथरा अगर हमको दे रहे हैं तो हम उसके बदले में कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं, ना केवल खाना ही, कुछ और भी इंसेंटिव दे सकते हैं। कुछ हम कूपन इशू कर सकते हैं, कुछ टोकन इशू कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप कोई यदि सरकारी योजना का लाभ लेना चाहें, या हम ऐसा टोकन इशू कर दें कि आप टॉकीज में जाकर के फिल्म देख सकें। इस तरह से हम लोग और भी इनिशिएटिव,
1: टॉकीज में जाकर फिल्म देख सकें,
0: इस तरह की योजना का, जैसे बच्चों का, सपोज दैट कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक पेट बॉटल है उसकी वैल्यू अच्छी है, वो 40-45 रुपए किलो तक बिकती है, तो हम ये कर सकते हैं कि उनको कुछ टेक्नोलॉजी सिखा सकते हैं बच्चों को कि आप कैसे इसको अपने घर में कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक प्लास्टिक की बॉटल है उसमें यदि हम डेली छोटे छोटे पाउचेस हैं सॉस के, या उसको हम डालते जाएं फिर प्रेस करते जाएं, डालते जाएं, वो एक भर कितना कंप्रेस्ड हो जाएगा कि कुछ दिन बाद ये पता चलेगा कि वो एक लीटर की प्लास्टिक की बॉटल में आपने 2 किलो प्लास्टिक, और वो छोटा प्लास्टिक है जो नालियों में चला जाता है जिसको सेग्रीगेशन बड़ा करना कठिन है। तो इस तरह के बच्चे का इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो हम उनमें उनको कुछ इंसेंटिव बच्चों को, चाहे वो फिल्म मूवी देख सके कोई बच्चों से रिलेटेड, या उनको कुछ उनके एजुकेशन से रिलेटेड अपन कॉपी देना चाहें, कंपास देना चाहें, इस तरह के चीजों पे भी कुछ।
1: तो उससे कई अच्छे परिवार के भी जो बच्चे हैं वो भी जुड़ेंगे, मध्यम वर्गीय हैं वो भी जुड़ेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पहल है ये हर वर्ग के लिए अनुकरणीय हो सकती है, जो छोटी सी पहल इस शहर से निकली।
0: जो मैंने बच्चों के इनिशिएटिव की बात करी तो मन की बात में एक एपिसोड भी आया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया था। अंबिकापुर में एक स्कूल है होली क्रॉस स्कूल, होली क्रॉस स्कूल के बच्चों ने क्या किया कि स्कूल में जितना भी लोग चॉकलेट या जो भी लेकर के जाते हैं
1: उसके रैपर
0: इकट्ठा करके और अलग अलग कंपनी के कोरियर बनाए और कंपनी को कोरियर कर दिया कि ये आपका कचरा आपको वापस। बच्चे लोगों के दिमाग में ये बात आई कि जब कंपनी हमसे 10 रुपए का 15-20 रुपए का हम चिप्स खा रहे हैं तो उसके कचड़े को

0: कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी क्यों नहीं है, उसकी भी रिस्पांसिबिलिटी उनको लेनी चाहिए। तो उन्होंने मतलब ब्रांड वाइज अलग अलग किया, स्कूल में सेग्रीगेट किया और उस ब्रांड को कुरियर कर दिया।
1: मैंने एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों ने एक प्रेरणा दी और एक समाज को और देश को आईना दिखाया कि यदि आप किसी चीज में कर रहे हैं तो कचरा निपटान की भी जिम्मेदारी बनती है। मैंने एक कहा जाए तो अब जो देश है वो बदल रहा है और गार्बेज कैफे की जो अवधारणा है वो वास्तव में देखा जाए तो वैश्विक होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है।
0: गार्बेज कैफे सर्च करिए तो आपको तमाम देशों के मिल जाएंगे, उसमें बांग्लादेश से लंदन इटली वगैरह सारे जगह,
1: जापान कोरिया यहाँ से भी
0: सभी जगह
1: प्रशंसा आई थी।
0: प्रशंसा आई थी, अंबिकापुर के ट्वीट को रिट्वीट किया गया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि ऐसा इनिशिएटिव यहाँ पे ले रहे हैं। और ट्विटर में सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि लगभग विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है।
1: दोस्तों आज इस महत्वपूर्ण विषय के साथ एक जो यहाँ से यात्रा शुरू हुई गार्बेज कैफे की, तो इस गार्बेज कैफे की जो यात्रा के सबसे प्रमुख जो व्यक्ति हैं रितेश सैनी जी से, उनसे हमने साक्षात्कार किया, इस यात्रा वृतांत के बारे में पूछा, इस रोचक यात्रा के बारे में पूछा और कई अनछुए पहलुओं का भी इन्होंने पूरा विवरण दिया जो काफी रोचक है। तो आज मुझे यानी आलोक शुक्ला को अनुमति दीजिए। जय हिंद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे थे इस पहल के पीछे काम कर रहे रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आलोक शुक्ल। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी कि 1143 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा संसार।

0: कार्यक्रम युवा संसार सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को आपके साथी हर्ष का नमस्कार
1: और आप सभी श्रोताओं को महिमा का भी नमस्कार।
0: और कार्यक्रम में साथियों, हम सभी जानते हैं कि भारत के इतिहास में अनेक ऐसे महान शासक हुए जिन्होंने अपनी वीरता, कुशल प्रशासन और जल कल्याणकारी नीतियों से अपनी छाप छोड़ी। और ऐसे ही महान शासकों में महाराजा रणजीत सिंह का नाम अत्यंत सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। और साथियों, आज महाराजा रणजीत सिंह जी की पुण्यतिथि है। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को पंजाब के गुंजरावाला, जो कि अब पाकिस्तान है, वहाँ पे हुआ था। और उनके पिता का नाम महन सिंह और माता का नाम राजकौर था। बचपन में उन्हें चेचक यानी कि छोटी माता हुई थी, और जिसके कारण उनकी एक आँख की रोशनी चली गई थी। लेकिन उन्होंने कभी अपनी कमजोरी को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। वे बचपन से ही साहसी, मेहनती और निडर रहे। इतने बड़े शासक होने के बावजूद महाराजा रणजीत सिंह का जीवन बहुत सादा रहा। उन्हें दिखावा पसंद नहीं था। वे मेहनती, ईमानदार और अनुशासित थे। और वे हमें कई ज़रूरी बातें भी सिखा गए, जैसे हमें सभी धर्मों को सम्मान करना चाहिए, लोगों के साथ न्याय करना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए और हमेशा जनता को भलाई के लिए काम करना चाहिए।
1: बिल्कुल, शेरे पंजाब के नाम से विख्यात महाराजा रणजीत सिंह भारतीय इतिहास के उन महान शासकों में से एक थे जिन्होंने वीरता और न्याय, धर्मनिरपेक्षता और सुशासन का अद्वितीय परिचय दिया। महाराजा रणजीत सिंह जी ने विभिन्न सिखों को एकजुट कर दिया और एक सशक्त सिख साम्राज्य की स्थापना की। वो एक योद्धा भी थे और दूरदर्शी प्रशासक भी थे। उन्होंने सेना का आधुनिकीकरण किया, न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाया और जनता के

कल्याण को प्राथमिकता दी। शेरे पंजाब शौर्य न्याय और मानवता के प्रतीक महाराजा रणजीत सिंह जी की पुण्यतिथि पर आज उन्हें हम शत शत नमन करते हैं। और इसी के साथ आइए सुनते हैं दोस्तों केसरी फिल्म से ये गीत। बी पराग की आवाज़ है, संगीत दिया है आर्को ने और गीतकार हैं मनोज मुंतशिर।

0: और साथ ही अभी आपने सुना ये केसरी फिल्म से गीत जिसे गाया था बी प्राग ने, और संगीतकार थे आरको और गीतकार माफ़ कीजिएगा गीतकार थे आरको और संगीतकार थे मनोज मुंतशिर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं साथियों, और साथ ही साथ बात कर लेते हैं अति लघु एवं मध्य उपक्रम उद्योग दिवस के बारे में।
1: दोस्तों, छोटे उद्योग बड़े सपने, आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव। भारत जैसे प्रगतिशील देश में MSME क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। यह क्षेत्र लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को संतुलित बनाए रखता है और यहाँ पर विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हस्तशिल्प, हथकरघा, खाद्य प्रसंस्करण, स्टार्टअप्स, महिला उद्यमिता और पारंपरिक उद्योगों को नई पहचान दिलाने में MSME का योगदान है। आज डिजिटल तकनीक के लिए हम देखते हैं कि ई कॉमर्स है, डिजिटल तकनीकों के माध्यम से और सरकारी योजनाओं ने छोटे उद्यमियों के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में MSME क्षेत्र एक सशक्त आधार है। युवाओं को उद्योग के लिए प्रेरित करने के लिए आसान ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना, डिजिटल पंजीकरण होना और गुणवत्ता सुधार जैसी पहले उद्यमियों के लिए एक नए अवसर का सृजन कर रही हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य यही है कि आत्मनिर्भर और एक समावेशी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा सके।
0: बिल्कुल सही कहा साथी, और MSME यानी कि अति लघु एवं मध्य उद्यम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, और इन उद्योगों से लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है और देश के आर्थिक विकास को भी गति मिलती है। और इस दिन का यही उद्देश्य है कि छोटे उद्योगों के महत्व को समझें और उन उद्यमियों को प्रोत्साहित करें। ये उद्योग कम पूंजी में शुरू किए जा सकते हैं और स्थानीय स्तर पर रोज़गार के अवसर पैदा करते हैं। और साथियों, साथ ही साथ आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने अप्रैल 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से 27 जून को सूक्ष्म, लघु और मध्य आकार के उद्यम दिवस के रूप में नामित किया। भारत में भी इस दिवस का विशेष महत्व है क्योंकि देश में करोड़ों MSME इकाइयाँ कार्यरत हैं, और ये उद्योग केवल उत्पादन ही नहीं करते बल्कि रोजगार, निर्यात, नवाचार और स्थानीय विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। MSME भारत की अर्थव्यवस्था का एक सशक्त और गतिशील आधार है। यह क्षेत्र केवल रोजगार उपलब्ध ही नहीं कराता बल्कि नवाचार, उद्यमिता, सामाजिक विकास और आत्मनिर्भरता को भी एक नई दिशा देता है।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को हम बढ़ाते हैं आगे। आज शनिवार का दिन है और शनिवार का विशेष कार्यक्रम रोजगार विशेषांक का कार्यक्रम रहता है, और इसी कड़ी में जो पहला रोजगार समाचार हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं वो है, UPSC ने एक विज्ञापन जारी किया है जिसके तहत मेडिकल ऑफिसर्स और लीगल ऑफिसर्स और कुछ अन्य पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यहाँ पर कुल वैकेंसीज की बात करें तो इसके अंतर्गत 450 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि तय की गई है 17 जुलाई। और वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो एक अभ्यर्थी के पास पोस्ट ग्रेजुएशन की या फिर लो की जो डिग्री है वो होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आप विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट है upsc.gov.in। वेबसाइट आप सभी के लिए एक बार दोहराते हैं, upsc.gov.in।
0: और साथियों, कार्यक्रम में अगला रोजगार समाचार है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की ओर से, जिन्होंने सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर ये भर्ती जारी की है जिसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और इसमें कुल 61 पद के लिए भर्ती की जाएगी। आयु सीमा की बात करें तो इसमें अधिकतम आयु रहेगी 33 वर्ष और आवेदन शुल्क इसमें रहेगा सामान्य OBC।

0: EWS उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये, SC ST और महिला उम्मीदवारों के लिए साथ ही साथ PWD और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए रहेगा 0, और इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 13 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जो है recruitment.csir.res.in। एक बार फिर आपको बता दें, recruitment.csir.res.in।
1: अगला रोज़गार समाचार है UPPSC से, और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए अभ्यर्थियों के पास यहां पर अधिकारी बनने का एक मौका है। कुल 500 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 27 जुलाई अंतिम तिथि है। शैक्षणिक योग्यता स्नातक और कुछ अन्य निर्धारित योग्यताएँ हैं, और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। विभाग की वेबसाइट है upsc.up.nic.in, upsc.up.nic.in।
0: और साथियों, ये रोज़गार है समाचार है, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर पद की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसमें शैक्षणिक योग्यता रहेगी। जूनियर असिस्टेंट पद के लिए उम्मीदवार को ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ ही साथ टाइपिंग भी आनी चाहिए, और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 पद के लिए उम्मीदवार को ग्रेजुएट और टाइपिंग के साथ साथ स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए। और इसमें आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा रहेगी 21 वर्ष और अधिकतम रहेगी 35 वर्ष, और आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 16 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए आप इनके आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो है ssc.uk.gov.in। एक बार फिर आपके लिए दोहरा दें, इस वेबसाइट है ssc.uk.gov.in।
1: DRDO में 77 पदों के लिए अप्रेंटाइसशिप के पोस्ट पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंतिम तिथि आवेदन की 22 जुलाई है, और इसके तहत अभ्यर्थियों को स्टाइपेंड भी दिया जाएगा प्रति माह, जो कि 10,500 रुपये से 12,300 रुपये तक का रह सकता है। आवेदन के लिए आप drdo.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर संपर्क कर सकते हैं, और अंतिम तिथि जो कि 22 जुलाई है, उससे पहले आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं drdo.gov.in।
0: और साथियों, लक्ष्मीबाई दिल्ली कॉलेज की तरफ से नॉन टीचिंग पद की भर्ती के लिए अधिसूचना है, जिसमें लाइब्रेरियन असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और लाइब्रेरियन अटेंडेंट की पद की भर्ती की जाएगी। इसमें आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार को अधिकतम आयु रहेगी 32 वर्ष, और इसमें आवेदन शुल्क रहेगा सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1,000 रुपये, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए 800 रुपये, और SC ST उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये। साथ ही साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 11 जुलाई 2026, और आप आवेदन कर सकते हैं इनकी वेबसाइट lakshmibaikollege.in।
1: ESIC में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं विशेषज्ञ और सीनियर रेजिडेंट्स के पदों के लिए। संबंधित विषय में अभ्यर्थी के पास स्पेशलिटी होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा का होना यहाँ पर अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 जुलाई है, और अधिक जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया के लिए विभाग की वेबसाइट है esic.nic.in।
0: और साथ ही साथ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप सी के पदों के लिए भर्ती जारी की है, जिसमें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पद के लिए कुल 33 रिक्तियां हैं, और वार्डन और मेट्रॉन पद के लिए 1,093 और 112 हैं। जिसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पद के लिए रहेगी उम्मीदवार को ग्रेजुएट पास होना चाहिए, और इसमें आयु सीमा रहेगी न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष, और वार्डन पद के लिए रहेगी उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता उन्हें 12वीं पास होना चाहिए, और साथ ही साथ इसमें आयु सीमा रहेगा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम रहेगा 25 वर्ष। आवेदन शुल्क इसमें 0 रहेगा सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, और साथ ही साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी साथियों 30 जून 2026, और आप आवेदन कर सकते हैं इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर, जो है hssc.gov.in। एक बार फिर हमारे साथियों को बता दें, वेबसाइट है hssc.gov.in।
1: रोजगार से जुड़ी जानकारी हम आपको यहाँ देते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आइए इस कार्यक्रम का अगला गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल साथियों, सुनिए फिल्म एकता टाइगर से गीत। आवाजें हैं KK और पलक मुच्छल की, शब्दों से सवारा है अन्विता दत्त गुप्तन ने, और धुन तैयार की है सोहेल सेन ने।

0: और साथियों, अभी आपने सुना ये गीत जो था फिल्म एक था टाइगर से, आवाज़ें थी के और पलक पूछल की, शब्दों से सवारा था अन्विता दत्त गुप्ता ने और धुन तैयार की थी सोहेल सेन ने। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और साथियों, हम बात कर रहे थे रोजगार समाचार की। अगला रोजगार समाचार है
1: दोस्तों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग के पदों पर यहाँ पर मौका है और अभ्यर्थियों के लिए कुल 17 पोस्ट यहाँ पर रिक्त हैं जिनके लिए वो आवेदन कर सकते हैं। इसकी जानकारी दें तो जूनियर क्लर्क, लाइब्रेरी असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट जैसे कुछ पदों के लिए आवेदन जो है अभ्यर्थियों से आमंत्रित किए गए हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो पद अनुसार वो अलग अलग है। यहाँ पर अभ्यर्थियों को 12वीं, स्नातक और जो डिग्री

0: डिप्लोमा है वो कुछ मांगे गए हैं। आयु सीमा की बात करते हैं तो अभ्यर्थी की आयु सीमा 18 कम से कम होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा जो है वो 30 से 35 वर्ष तक होनी चाहिए, जो कि पदानुसार अलग अलग है। चयन की बात करते हैं तो यहाँ पर अभ्यर्थियों का चयन एक लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 8 जुलाई है, जिससे पहले आप जो है आवेदन की प्रक्रिया को इन पदों के लिए पूरा कर सकते हैं।
1: और साथियों, ये रोज़गार समाचार है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कुल 121 रिक्तियों के लिए RPSC प्रथम श्रेणी शिक्षक विशेष शिक्षा भर्ती 2026 के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसमें व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो प्रथम श्रेणी के शिक्षक पद के लिए रहेगी संबंधित विषय में स्नातकोत्तर और साथ ही साथ विशेष BEd होना अनिवार्य है। इसमें आयु सीमा रहेगी न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। आवेदन शुल्क इसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रहेगा ₹600, OBC EWS SC ST और PWD उम्मीदवारों के लिए ₹400 और आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 30 जून 2026। और इनकी आधिकारिक वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in। एक बार फिर आपको बता दें, rpsc.rajasthan.gov.in।
0: NABARD यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में बैंक मेडिकल ऑफिसर के पद रिक्त हैं, जिन पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर चयन किया जाएगा यहाँ पर, और चयन एक इंटरव्यू प्रक्रिया के माध्यम से होगा। आवेदन की जो अंतिम तिथि वो है 15 जुलाई, जिससे पहले अभ्यर्थी जो है वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
1: और साथियों, ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्लाटून कमांडर और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर पद की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो प्लाटून कमांडर पद के लिए उम्मीदवार को स्नातक के साथ साथ उत्तर प्रदेश PET होना चाहिए और ब्लॉक आयोजक पद के लिए भी जो है यही शैक्षणिक योग्यता रहेगी। और इसमें आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा रहेगी 21 वर्ष और अधिकतम रहेगी 40 वर्ष। आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 6 जुलाई 2026 और सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क रहेगा ₹25। आवेदन करने की अंतिम तिथि हमने आपको बताई 6 जुलाई 2026 और आधिकारिक वेबसाइट इनकी है upssc.gov.in।
0: द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अप्रेंटाइशिप के लिए आवेदन उम्मीदवारों से मांगे गए हैं। अंतिम तिथि 6 जुलाई है और आयु सीमा की बात करते हैं तो 21 से 30 वर्ष के अभ्यर्थी जो है वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। newindia.co.in विभाग की वेबसाइट है, newindia.co.in।
1: और साथ ही ये रोज़गार समाचार है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पंचकुला ने इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी पद और टेक्नीशियन पद के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है, जिसमें शैक्षणिक योग्यता रहेगी इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी पद के लिए उम्मीदवार को 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। और टेक्नीशियन सी पद के लिए उम्मीदवार के पास SSLC के साथ साथ ITI और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में होनी चाहिए। और इसमें आयु सीमा रहेगी न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष। आवेदन शुल्क इसमें रहेगा जनरल OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए ₹590 GST के साथ, और SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों के लिए 0 रहेगा। और आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि रहेगी 2 जुलाई 2026। इनकी आधिकारिक वेबसाइट है BEL.com।
0: उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में कुल 196 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर्स से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंतिम तिथि 2 जुलाई है। GNM और कुछ अन्य निर्धारित योग्यताएं हैं जो अभ्यर्थी के पास होना अनिवार्य है। UKMSSB.org विभाग की वेबसाइट है, UKMSSB.org।
1: और साथियों, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुल 607 पदों पर भर्ती के लिए स्टेट और डिपार्टमेंट सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट में भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसमें शैक्षणिक योग्यता रहेगी उम्मीदवार को स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए और इसमें आयु सीमा रहेगी 21 से 40 वर्ष। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, दस्तावेज सत्यापन और अंतिम योग्यता सूची भी जो है शामिल है। और इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 3 जुलाई 2026 और आवेदन करने की वेबसाइट रहेगी rajasthan.gov.in। एक बार फिर आपको बता दें, rpsc.rajasthan.gov.in।
0: भारत संचार निगम लिमिटेड में कुल 100 पदों के लिए जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंतिम तिथि 3 जुलाई है। विभाग

की वेबसाइट है bsnl.go.in। इस पर जाकर आप अंतिम तिथि से पहले आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, वक्त अब हमें और इजाज़त नहीं दे रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये कार्यक्रम जो है वो पसंद आया होगा। दीजिएगा इजाज़त अपने रेडियो साथी हर्ष और महिमा को, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा संसार, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमेनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमेनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोर ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। इनमें PMEGP 2.0 पोर्टल, समाधान 2.0 पोर्टल, PMS पोर्टल, MSME

0: परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नामकरण किया गया है। देविका सिहाग, किताम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी कि 1143 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती और रात 10:00 आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

प्रातः, माफ कीजिएगा, 7:30 पर होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत, 8:25 पर सुगम संगीत, 9:15 पर कार्यक्रम होगा एक फिल्म से, 6:20 पर कार्यक्रम कृषि जगत में, आज आप सुनेंगे बेल वाली सब्जी फसलों की देखभाल और बातचीत रहेगी ढींगरी की काश्त के बारे में, वार्ताकार होंगे डॉक्टर राकेश चुग, 7:00 होगा कार्यक्रम ग्रामीण संसार आपकी पसंद। अभी आपने सुनी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा, प्रस्तुत है कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल प्रातः 11:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम मन की बात, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे। 11:40 पर कार्यक्रम मन की बात का संस्कृत संस्करण प्रसारित किया जाएगा। 6:30 पर लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम लंदन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले ICC महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल समाप्ति तक प्रसारित किया जाएगा। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से कल आप सुनेंगे प्रातः 6:05 पर कार्यक्रम वंदना श्री रामचरित मानस गान, 6:40 पर सुबह 7:15 पर कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम सुबह सवेरे प्रसारित किया जाएगा सुबह 7:35 पर, प्रातः 9:00 कार्यक्रम एक कलाकार, दोपहर 12:10 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत और दोपहर 1:10 पर फोन इन आधारित आपके अनुरोध पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रातः 8:30 पर आप सुनेंगे बच्चों का मनपसंद कार्यक्रम बालकुंज, दोपहर 12:30 पर घर आंगन, शाम 5:30 पर कार्यक्रम युवा संसार। प्रातः 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कृषि की बातें, दोपहर 2:30 पर होगा कार्यक्रम खेत खलिहान और शाम 6:20 पर होगा कार्यक्रम कृषि जगत। ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब प्रस्तुत है स्थानीय सूचना। सोनम जिला सोनीपत से है। उम्र है 18 साल, कद 5 फुट, पतला शरीर है, गोरा और लंबूतरा चेहरा है, हिंदी भाषा बोलती हैं। शिवपुरी कुंडली से गायब हुई हैं। इनके बारे में किसी के पास भी कोई भी सूचना है तो आप थाना कुंडली में सूचना दे सकते हैं।

एक बार पुनः सुने, कल प्रातः 11 बजे कार्यक्रम मन की बात प्रसारित किया जाएगा और उसके उपरांत 11:40 पर संस्कृत भाषा में कार्यक्रम मन की बात का पुनः प्रसारण किया जाएगा। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कचरा संग्रहण करने वाले सभी वाहनों को जीपीएस प्रणाली से जोड़ने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के सभी विभागों में ई ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए और हरियाणा में कल से शुरू होने वाले पल्स पोलियो अभियान के तहत लगभग 36 लाख बच्चों को पोलियो की बूंदें पिलाने का लक्ष्य रखा गया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कचरा संग्रहण करने वाले सभी वाहनों को जीपीएस प्रणाली से जोड़ने के निर्देश दिए हैं ताकि उनकी नियमित निगरानी की जा सके। मुख्यमंत्री ने आज हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ ठोस कचरा प्रबंधन की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रत्येक घर से नियमित रूप से कचरे का संग्रहण हो तथा कहीं भी गंदगी के ढेर न लगने दिए जाएं। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर लोगों का अधिक आवागमन रहता है, वहां विशेष रूप से साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। सड़कों की नियमित सफाई के साथ साथ उनके किनारों पर वन विभाग द्वारा फूलदार एवं आकर्षक पौधों का रोपण भी कराया जाए। मुख्यमंत्री ने नगर निकायों में वार्ड समितियों की सक्रिय भागीदारी पर बल देते हुए उनके लिए एक समर्पित पोर्टल विकसित करने के निर्देश दिए ताकि समिति के सदस्य एवं नागरिक अपनी समस्याएं एवं सुझाव सीधे साझा कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता कार्यों के लिए नई आवश्यकताओं एवं आधुनिक तकनीकों के अनुरूप ही टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाए। उन्होंने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले स्वच्छता पखवाड़े की तैयारियां अभी से शुरू करने तथा इसका विस्तृत कैलेंडर जारी करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को त्रैमासिक आधार पर शहरी स्थानीय निकायों के वार्डों की स्वच्छता एवं कार्य प्रणाली की रैंकिंग तय करने तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले वार्डों को सम्मानित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले वार्डों और सफाई कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया जाए। मुख्यमंत्री ने बरसात के मौसम को देखते हुए शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत आने वाले सभी बड़े नालों, नालियों एवं ड्रेनों की व्यापक सफाई 30 जून

0: तक हर हाल में पूरी करने और गलियों की नालियों की नियमित सफाई करने और उनमें आवश्यकता अनुसार चूने का छिड़काव करने के निर्देश भी दिए ताकि जल भराव एवं संक्रमण की स्थिति उत्पन्न न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण करेगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी विभागों के मुख्यालयों एवं जिला स्तर के कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए। आज मानव संसाधन विकास की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी प्रत्येक माह अपने कार्यों का विवरण अनिवार्य रूप से HRMS पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करें। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक माह सभी अधिकारी एवं कर्मचारी समय पर अपना विवरण पोर्टल पर दर्ज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीकृत फाइल मूवमेंट और ट्रैकिंग सूचना प्रणाली CFMS के संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने, उनकी जिला एवं मुख्यालय स्तर पर नियमित समीक्षा करने तथा इंट्रा हरियाणा पोर्टल का सभी विभागों में प्रभावी एवं अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। हरियाणा में कल पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के निदेशक डॉ. वीरेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के दौरान लगभग 36 लाख बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 28 जून को 17,331 बूथ स्थापित किए जाएंगे और इसके बाद 30 जून तक 34,000 टीमों द्वारा घर घर जाकर छूटे गए सभी पात्र लाभार्थियों को पोलियो बूंदें पिलाई जाएंगी। जींद प्रशासन कल से शुरू हो रहे 3 दिवसीय पोलियो पल्स अभियान के लिए तैयार है। उप सिविल सर्जन एवं पल्स पोलियो अभियान के जिला नोडल अधिकारी डॉ. राजेश भोला ने आज कहा कि इसके लिए सभी प्रशासनिक व चिकित्सा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपायुक्त की अध्यक्षता और सिविल सर्जन की देखरेख में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद अभियान को अंतिम रूप दे दिया गया है।
1: देखिए, हरियाणा सरकार व स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पहले भी जैसे पल्स पोलियो का अभियान चलता रहा है, उसी तरीके से जैसी सरकार की हिदायत है 30 जून तक पल्स पोलियो का कार्यक्रम चलाया जाएगा। जिला जींद के लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। DC महोदय ने आम जनता से आह्वान किया है कि अभिभावक अपने 0 से 5 वर्ष तक के जितने भी छोटे बच्चे हैं सभी को 28 जून को पल्स पोलियो का जो पहला दिन है बूथ पर जाकर ही सभी बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाएं।
0: उन्होंने बताया कि इस बार जिला जींद में 0 से 5 वर्ष तक के लगभग 1,38,044 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु आज रोहतक के भारतीय प्रबंधन संस्थान में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के 17वें बैच के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए श्री संधू ने कहा कि आधुनिक प्रबंधन का दायरा अब केवल दक्षता और संसाधनों के प्रभावी उपयोग तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में वैश्विक चुनौतियों, तकनीकी बदलावों और समाज के प्रति निरंतर बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना भी उतना ही आवश्यक है। श्री संधू ने विद्यार्थियों से कहा कि नेतृत्व का आधार अधिकार का योग नहीं बल्कि स्पष्ट सोच, परिस्थितियों के अनुरूप समय को ढालने की क्षमता, ईमानदारी और विश्वास अर्जित करने की योग्यता है। उपराज्यपाल ने प्रबंधकों से आग्रह किया कि वे पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़कर शिक्षा, नवाचार और उद्यमिता की शक्ति का उपयोग करें तथा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा में योगदान दें। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बाद में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के कुलपति के साथ बैठक भी की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उभरती प्रौद्योगिकियों के परिवर्तनकारी प्रभाव और समस्याओं के समाधान में उनके प्रभावी उपयोग पर चर्चा हुई। पलवल के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने आज जिले के सभी मतदान

0: मतदाताओं से विशेष गहन पुनरीक्षण के काम में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का शुद्ध एवं त्रुटि रहित होना लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक की भागीदारी लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाती है। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रगति की जानकारी देते हुए डॉक्टर जयेंद्र सिंह छिल्लर ने कहा,
1: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार SIR 2026 का कार्य हमारे जिले पलवल में चल रहा है। पलवल के ज्यादातर BLOs ने SIR 2026 के इन्यूमरेशन फॉर्म्स या परपत्रों के वितरण का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया है और अब सभी BLOs घर घर जाकर ये फॉर्म्स या परपत्र एकत्रित कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि कोई भी पात्र मतदाता वंचित न रहे। मेरा पलवल जिले के सभी मतदाताओं, विशेषतः युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजन से विनम्र अनुरोध है, इस प्रक्रिया में सहयोग दें।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कचरा संग्रहण करने वाले सभी वाहनों को GPS प्रणाली से जोड़ने के निर्देश दिए। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी कि 1143 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: लगाते हैं, और ढींगड़ी मशरूम्स लगभग ना के बराबर ही लगाते हैं हमारे हरियाणा में, और दूसरी जगह में इंडिया में कई जगह पर लगाई जाती है।
1: इसके ऊपर चलते हैं डॉक्टर साहब, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आपने चार पांच प्रकार की बताई है मशरूम में, तो अगर कोई आम व्यक्ति है, आम व्यक्ति का मतलब इसमें किसान भाई भी आ जाए और जो उपभोक्ता है वो भी आ जाए डॉक्टर साहब इसमें, तो थोड़ा सा बताओ संक्षेप में थोड़ा थोड़ा करके, जो पांचों प्रकार के मशरूम हैं वो क्या होते हैं, उनके लक्षण कैसे होते हैं।
0: जो बटन मशरूम्स है ये हम अक्टूबर से लेके फरवरी तक इस मशरूम को लगा सकते हैं। जब अक्टूबर में लगाएंगे इसकी खाद बनाने में 1 महीना लगता है, और इसके बाद हमारे को केसिंग करनी पड़ती है, और ये लगभग 50 से 60 दिन के बाद पहली मशरूम निकलती है। और
1: इसकी दिखावट और बनावट से कैसे
0: ये
1: पहचाने।
0: बटन की तरह होती है
1: अच्छा
0: इसलिए हम इसको बटन मशरूम बोलते हैं।
1: हाँ
0: इसकी टोपी छोटी होती है और डंडी भी छोटी ही है।
1: अच्छा
0: और एक ऑयस्टर मशरूम्स है जो कि छतरी की तरह होती है जिसमें गलफड़े से होते हैं, और ये छतरी की तरह होने के कारण इसको लोग खाना कम पसंद करते हैं
1: अच्छा
0: क्योंकि इसके बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं है। और
1: अच्छा
0: ये जो ऑयस्टर मशरूम्स है ये हम पूरा साल लगा सकते हैं
1: अच्छा
0: मई जून के महीने को छोड़ के।
1: हाँ, तैयार कितने दिन में हो जाती है ये।
0: ये जो ऑयस्टर मशरूम्स है ये हमारी लगभग 20 से 25 दिन में आनी शुरू हो जाती है, और 50 दिन तक इसकी एक फसल का चक्र चलता है, और
1: ठीक है।
0: हम साल में लगभग 5-6 फसल चक्र ले सकते हैं।
1: तीसरे प्रकार के मशरूम कौन से डॉक्टर साहब।
0: तीसरी है मिल्की मशरूम्स
1: हाँ
0: जो कि हम बारिश में ले सकते हैं,
1: हाँ
0: जिसकी टोपी छोटी होती है डंडी लंबी होती है,
1: हाँ
0: और ये मशरूम्स हम जुलाई में हम लगा सकते हैं। और इस मशरूम्स में और ऑयस्टर मशरूम्स में थोड़ा सा फर्क है
1: अच्छा
0: जो कि हम लगाने में जैसे लगाएंगे इसमें मिल्की मशरूम्स में हमको केसिंग करनी पड़ती है और ऑयस्टर मशरूम में हमको केसिंग नहीं करनी पड़ती।
1: ठीक बात। और एक और मशरूम बता रहे थे, एक दो प्रकार और बचे
0: एक
1: हैं।
0: पेडिस्टा मशरूम्स है
1: हाँ
0: जो कि हमारे यहाँ पर कम प्रचलित है,
1: हाँ
0: और एक और मशरूम्स है जिनकी हम दवाइयाँ बनाते हैं,
1: हाँ
0: और वो मशरूम्स है कोर्डिसेप मशरूम्स, कीड़ा जड़ी मशरूम्स, जो कि लैब में बना सकते हैं हम, और वो 1 लाख रुपए किलो तक मिलती है।
1: बिल्कुल लगता है। हरियाणा प्रदेश की बात करते हैं, इसमें हरियाणा प्रदेश में कौन कौन से प्रकार के मशरूम आमतौर पर प्रचलन में है और जिनकी खेती की जाती है, जो खेती करना भी संभव है यहाँ पे इन जिनका।
0: देखो खेती करना हमारी तीन मशरूम्स लगा सकते हैं, बटन मशरूम्स लगा सकते हैं जो कि अक्टूबर के महीने में लगाते हैं और फरवरी तक ये चलती है, जिस टाइम बारिश होली आने लगती है उस टाइम इसमें कीड़े आने शुरू हो जाते हैं, और इनकी फसल भी इतनी ही, इनका लाइफ साइकिल इतना है कि वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम ढींगड़ी मशरूम लगा सकते हैं, फरवरी में हम इसको सोइंग कर सकते हैं, और ये हमारी लगभग मार्च अप्रैल तक चलेगी, और उसके बाद फिर एक और भी हम ले सकते हैं। तो इसमें मई जून को छोड़ के आप ऑयस्टर मशरूम पूरा साल लगा सकते हैं, मिल्की मशरूम्स हम जुलाई में लगा सकते हैं, इसको ज़्यादा तापमान की जरूरत होती है जो कि 35 तापमान तक सहन कर लेती है।
1: हाँ, ये जो तीन प्रकार के मशरूम यहाँ पे लगा सकते हैं डॉक्टर साहब,
0: हाँ जी
1: तो इसमें अब आते हैं आपके जो विषय आप बता रहे थे उस पर विस्तार से बात करते हैं, ढींगरी मशरूम के बारे में। तो ढींगरी मशरूम क्या होती है, इसका बारे में बताइए, और मशरूम है उनसे कैसे भिन्न है ये।
0: ढींगड़ी मशरूम छतरी की तरह मशरूम होती है जो कि पहले पेड़ों पे भी उग जाती थी, जैसे लकड़ी है लकड़ी पर भी उग जाती है बारिश के मौसम में, परंतु हम इसको लगाने के लिए इसका लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। इसको हम एक दिन में इसकी हम खाद बना सकते हैं। खाद बनाने के लिए भी कृषि अवशेष की जरूरत होती है, जैसे कि कृषि अवशेष बटन मशरूम में है, बटन मशरूम में खाद बनाएंगे तो हमारा 1 महीना लगता है। हम ओइस्टर मशरूम ढींगड़ी मशरूम की खाद बनाएंगे 1 दिन लगेगा। इसमें हम गेहूं का जो तूड़ा है वो ले सकते हैं, धान की पुआल ले सकते हैं, सरसों की वनछंटिया ले सकते हैं, और जो बड़े बड़े हों तो हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। उसके बाद हम खाद लेनी बनाने के लिए हम सबसे पहले जो तूड़ा लिया है उसको हम गर्म पानी से उपचारित करते हैं। हम इसको तीन विधियों से बनाते हैं। पहली विधि है गर्म पानी से उपचारित करना। सबसे पहले हम तूड़ा लेते हैं, 10 से 12 किलो तूड़ा ले लिया हमने। इस तूड़े को गन्नी बैग्स हैं जो हमारे बोरी आती हैं प्याज की बोरी जैसे लगा लो, उन बोरियों में

0: लेते हैं और बोरी में भरने के बाद होदी में डाल देते हैं, जैसे पानी का ट्यूबवेल की होदी है उसमें डाल सकते हैं। और इसको हम लगभग 18-20 घंटे के लिए भिगो देते हैं। भिगोने के बाद हमने निकालना है और निकाल कर हमने उबलते पानी में डाल देना है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा और हम ठंडी चीज़ डाल देंगे तो 60-65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा और हम 40-45 मिनट तक इसको उबलते पानी में छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी फंगस है, कोई भी फफूंद है, कोई जीवाणु है, कीटाणु है, वो सभी मर जाएंगे। हाँ। उसके बाद हमने इसको लेना है, हमारा ये खाद तैयार हो गई है। और एक दूसरा तरीका है जो कि रासायनिक विधि से है। रासायनिक विधि में ये है कि हमने तूड़ा लेना है और एक ड्रम में डाल लेना है। 10-12 किलो तूड़ा ले लिया, उसको हमने ड्रम में डाल दिया और ड्रम में 100 लीटर पानी डाल दिया और हमने 125 ml फॉर्म एल्डिहाइड का सॉल्यूशन और 7.5 ग्राम बावेस्टीन डाल देनी है। हाँ। और ऊपर से कवर कर देना है, ढक देना है प्लास्टिक से। हाँ। ताकि फॉर्म एल्डिहाइड का सॉल्यूशन है वो उड़े ना और उसमें जो जो हमने तूड़ा डाला है उसको हम कीटाणु रहित कर दें। और तीसरा तरीका है पास्चुराइज्ड मेथड। हाँ। पास्चुराइज्ड मेथड में हमने खाद तूड़ा लेना है, उसको हमने 3-4 दिन तक भिगो के रखना है, पलटाई करनी है। उसके बाद जिसके पास जो छोटी विधि से बटन मशरूम की खाद लगाता है उसको हम चैम्बर में डाल देते हैं और चैम्बर में हमने लगभग 55-60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगभग 20-22 घंटे के लिए मेंटेन कर देना है। और उसके बाद हमने तूड़े को, हमने जो खाद बनी है हमारी, उसको ठंडा करना है, फिर बिजाई के लिए तैयार है। तो हाँ। ये तीनों में से हम किसी भी विधि से बना सकते हैं। पर हम किसान भाई को कहते हैं कि जो हमारा पहली विधि है गर्म पानी से उपचारित और दूसरी विधि है रासायनिक विधि, उन्हीं से खाद बनाए। क्योंकि सबसे पहले अगर किसान पास्चुराइज्ड मेथड से बनाएगा तो उसका नुकसान भी हो सकता है क्योंकि पहली बार मशरूम लगाएगा। अच्छा। हम कहते हैं कि जो पहली बार मशरूम लगाए लो कॉस्ट कल्टीवेशन करे जिस पे कम से कम खर्चा आए, तो हमारी खाद तैयार हो गई है। खाद तैयार होने के बाद क्या करना है, हमने इसको फर्श पर फैला देना है।
1: फर्श पे फैलाएंगे डॉक्टर साहब। इसमें पहले दो बातें जान लेते हैं। पहली बात तो ये कि जो आम किसान भाई है, दोनों तरह के किसान भाई है, उनके बारे में बात करेंगे। एक तो जो नए किसान भाई है जो पहली बार मशरूम की खेती कर रहे हैं, दूसरा जो पुराने किसान भाई हैं जो बार बार मशरूम का उत्पादन ले रहे हैं, वो भाई कितने रकबे तक में खेती कर सकते हैं, खासकर नए भाइयों के लिए आप क्या फला दोगे भाई, शुरुआत कितने क्षेत्र से करें इसकी, पहला सवाल तो ये है डॉक्टर साहब। इसमें
0: सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें हाँ। कि हम बंद कमरे में इसकी खेती करते हैं हाँ। और हम छोटे से कमरे 10x10 के कमरे में इसकी हम शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे तो हमने सबसे पहले जो खाद बनाई थी, खाद को हमने फर्श पर फैला देना है। कोशिश करें फर्श पक्का हो
1: हाँ।
0: पक्का ना हो हम ईंटें बिछा सकते हैं।
1: अच्छा।
0: अगर ईंटें भी नहीं है हमारे पास तो पॉलिथीन बिछा लें, क्योंकि उसका जो खाद का है जमीन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो।
1: जमीन का मतलब है कि
0: मिट्टी के साथ डायरेक्ट ना हो, क्योंकि मिट्टी में सूत्रकृमि होते हैं और सूत्रकृमि अगर खाद में होंगे तो हमारी खाद अच्छे से नहीं बनेगी और हमारी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी।
1: अब दूसरा सवाल लगता है, इसी में जोड़ते हैं कि जो आपने जगह तो बता दी 10x10 के कमरे में इसको हम कर सकते हैं, क्या इसको हम खुले आसमान के नीचे कर सकते हैं, कुछ सीढ़ के नीचे कर सकते हैं, या कमरा ही जरूरी है?
0: देखो आप कच्चे कमरे में कर सकते हो, घर में कोई शेड पड़ा हो, पुराना किचन हो उसमें कर सकते हो। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा काम करें शुरू किसान भाई। और हमारे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में इसकी ट्रेनिंग होती है, मूर्थल में इसकी ट्रेनिंग होती है, सोलन में ट्रेनिंग होती है, तो वो ट्रेनिंग लेना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और सबसे पहले फर्श को उसने फॉर्म एल्डिहाइड के सॉल्यूशन से धोना है, साफ करना है, ताकि कीटाणु रहित हो जाए।
1: कितनी बार साफ करें
0: उसको? 2% का सॉल्यूशन बनाकर उस पे स्प्रे कर दें और वो कीटाणु रहित हो जाएगा। फिर हमने जो खाद बनाई थी तूड़े की उसको फर्श पर फैला देनी है और उसमें से पानी, कोशिश करें कि फर्श ढलवा हो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि उसका जो पानी है हम उस पानी को दोबारा भी यूज कर सकते हैं। और उसके मॉइस्चर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, जो नमी है, नमी का विशेष ध्यान रखना है। लगभग 55-60% तक नमी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नमी ना हो। इसके बाद हमने तूड़ा ले लिया, तूड़े का हमारी खाद बन चुकी है। खाद बनने के बाद हमारे बीज है,

0: बीज की मात्रा हम 10 से 12 किलो तूड़े में 1 किलो बीज की मात्रा
1: रखेंगे, रखेंगे। तो डॉक्टर साहब इसमें जैसे खाद बिछा दी, जो खाद की हमने परत बिछाई है वहां पे, उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए?
0: नहीं, अभी हमने बिछाई नहीं है, हमने खाद को तैयार किया है, उसमें से पानी को कम किया है, मॉइस्चर ठीक कम किया है, अभी परत पे आ रहा हूं मैं। उसके बाद हमने बीज मिलाना है।
1: अच्छा, बीज मिलाना खाद के अंदर?
0: हाँ जी। उस बीज की मात्रा हमने 10 से 12 किलो सूखे भूसे के लिए 1 किलो बीज की मात्रा रखनी है।
1: अच्छा।
0: और ये बीज गेहूं के दानों पर बन जाता है, और ये बीज हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से ले सकते हो, मूर्थल से ले सकते हो, और आप कहीं भी किसी विश्वसनीय जगह से जिसका आपको पता हो, विश्वास हो, उस जगह से बीज लेना है। और ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 80 रुपये किलो के हिसाब से आपको बीज मिल जाता है। और बीज लेते वक्त भी हमने थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, ताकि बीज हमारा खराब ना आए। कोई भी बीज के दानों पर हरे रंग की, काले रंग की फफूंद नहीं होनी चाहिए। अगर ये फफूंद हो तो आप बीज बदल लें और अच्छा बीज लें। और हमारे को ये भी ध्यान रखना है कि बीज को जब हम लेके आए तो तापमान ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम बस में लेके आते हैं तो रात को लेके आए और बोनट पे ना रखें। अगर ये तापमान 35 से ज्यादा हो जाएगा तो बीज खराब होने का खतरा।
1: जो आप बता रहे हो कि हरे काले रंग के अगर उसमें धब्बे हैं तो वो फफूंद है, तो वो बीज इसका मतलब ये कि खराब है वो।
0: हाँ जी।
1: और अगर बीज ला रहे हैं तो कम से कम ऐसी व्यवस्था करें कि वो ठंडी जगह पे रखें इसको,
0: ठंडी जगह पर रखें। हाँ, हाँ। और दिन के समय लेके आए।
1: दिन के समय क्या एक बात इसमें ध्यान रखते हैं डॉक्टर साहब, एक तो ठंडी जगह होनी चाहिए, उस जगह में नमी होनी चाहिए या सूखी जगह होनी चाहिए?
0: नहीं, इसका कुछ भी नहीं है, सूखा हो बीज रखने के लिए सूखा जगह ही चाहिए। हमने इसको लगभग ज्यादा दिन नहीं रखना है, 3-4 दिन ही रख सकते हैं,
1: घर में 3-4 दिन ही लाके रख सकते हैं वो, लेकिन वो
0: भी फ्रिज में, वो भी फ्रिज में रखें।
1: बिल्कुल।
0: और जिस टाइम हमने बिजाई करनी है उसके हिसाब से ही डिमांड करें और उसी टाइम ही लेके आए, लगभग 1 दिन पहले ला सकते हो आप। अब बीज लाने के बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने बीज खाद में मिलाना है। अब बीज को मिलाते वक्त 2-3 तरीके हैं, उनमें से कोई भी तरीके से मिला सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हमने खाद डाल दी और बीज की मात्रा मैंने बताई है 10 से 12 किलो सूखे भूसे में 1 किलो बीज मिला दिया और उसको अच्छे से हिला लिया। पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हमने इनको लिफाफों में लगाना है। अगर लिफाफों में लगाएं हम तो इसको हम लेयरिंग मेथड से लगा सकते हैं। लेयरिंग मेथड में हमने पहले खाद डाल दी, फिर बीज डाल दिया, फिर खाद डाल दी, इसी तरह हमने 1-1.5 इंच की 3-4 परत बना दी। और सबसे पहले लिफाफों में हमने क्या करना है, लिफाफे जो लेने हैं लिफाफों में हमने छेद करने हैं, छेद 5 mm का कर सकते हैं और 10 से 12 छेद हमने उसमें छेद करने हैं। और छेद करते वक्त भी हमने ध्यान रखना है कि छेद हम सुए से करें तो गर्म करके करें, ताकि पोलेथीन बीच में ना रहे। अगर पोलेथीन बीच में रहेगा तो उसमें जो पानी ज्यादा है वो नहीं निकल पाएगा।
1: ठीक बात।
0: तो एक रैंडम मिक्सिंग मेथड बताया था मैंने कि उसको मिला के करना है, दूसरा लेयरिंग मेथड से बताया था, तीसरा टॉप लेयरिंग मेथड से है।
1: अच्छा।
0: टॉप लेयरिंग मेथड में हमने 3/4 लिफाफा भर लिया, उसके ऊपर हमने बीज डाल दिया और फिर उसको कवर कर दिया। और लिफाफों को भरते वक्त हमने ये भी ध्यान रखना है कि लिफाफों में सलवटें ना आए।
1: ठीक बात।
0: साइडों में हमने दबा देना है थोड़ा सा, अगर सलवटें आएंगी तो वहां पर पानी रुक जाएगा, अगर पानी रुकेगा तो फंगस आने का खतरा रहेगा। जैसे कि हम ब्रेड को गीला करके किचन में 2 दिन छोड़ दें तो उसमें मोल्ड आ जाता है, एस्परजिलस आ जाता है। और हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि साइडों में सलवटें ना आए, और सलवटें आएंगी तो फंगस आने का खतरा रहेगा।
1: ठीक बात।
0: ये दूसरा तरीका था। अब हम इसको बेड पर भी लगा सकते हैं।
1: बेड
0: पर जैसे कि हम सोने के लिए ट्रेन में जाते हैं, सीट हैं, रैक्स बना लेने हैं।
1: अच्छा।
0: रैक बनाएंगे तो हमने नीचे पॉलिथीन बिछा देना है और उस पे हमने खाद बना देनी है।
1: ठीक बात।
0: खाद डाल के, परंतु हम जो पॉलिथीन वाला तरीका है उसको हम ज्यादा प्रेफर करते हैं।
1: वो क्यों करते हैं?
0: क्योंकि अगर बीमारी कोई आ जाती है तो हम एक लिफाफे में बीमारी आएगी तो हम उसको निकाल के फेंक सकते हैं।
1: हाँ, फेंक सकते हैं, अलग कर देंगे।
0: अगर बेड पे लगा रखी है, एक बेड पे बीमारी आ गई

0: तो वो फैल जाएगी पूरे बेड पे और हमारी प्रोडक्शन नहीं हो
1: और
0: पाएगी।
1: वो बेड है उसको निकाल पाना संभव नहीं है।
0: हाँ जी,
1: हाँ
0: और पॉलिथीन में लगाने का एक और भी फायदा है
1: क्या?
0: कि हम पॉलिथीन में लगाएंगे तो इस पर हम जब पानी का स्प्रे करेंगे, नमी बनाएंगे, तो उस समय हमारा पानी उस पे नहीं रुकेगा और ज्यादा उनको हवा भी मिलती रहेगी। अगर इसको हमने सबसे पहले हमने लिफाफे भर लिए, लिफाफे भरने के बाद 3/4 लिफाफे भरे थे,
1: हाँ
0: लिफाफे भरने के बाद हमने इसको कमरे में रख दिया, उल्टा
1: हाँ
0: करके इसको
1: हाँ
0: ऊपर से बांध दिया
1: हाँ
0: और कमरे में रख दिया।
1: ठीक
0: उस
1: बात।
0: समय कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा चाहिए,
1: हाँ
0: ऑक्सीजन कम चाहिए,
1: हाँ
0: तो हमको कमरे को दिन में एक आध बार ही खोलना है। और
1: हाँ
0: यह भी ध्यान रखना है कि अगर हमने 5-6 लिफाफे लगाए हैं तो हम छोटे कमरे का प्रयोग करें।
1: हाँ
0: अगर हमने ज्यादा लगा रखे हैं लिफाफे कमर्शियल लेवल पे
1: तो बड़े
0: तो
1: कमरे में।
0: बड़े कमरे को करें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर छोटे में लगा रखा है तो वो नहीं बन पाएगी।
1: हाँ
0: तो इसलिए हमको ध्यान रखना है, लगभग 4 दिन के बिजाई के 4 दिन के बाद आप देखेंगे तो उसमें जो बीज डाला था हमने गेहूं का, उसके
1: हाँ
0: चारों ओर सफेद सफेद रंग के धागे बनने शुरू हो जाएंगे।
1: अच्छा
0: और वो हमारे जो कमरा बंद किया हुआ था, लगभग 20 दिन के बाद देखोगे तो ये पूरा लिफाफा चूने की तरह सफेद हो जाएगा।
1: हाँ
0: उस समय हमने क्या करना है, अब लिफाफा हमारा पूरा का पूरा सफेद हो चुका है, उस टाइम हम इसको या तो बेड पर रख सकते हैं
1: हाँ
0: या हम इसको लटका सकते हैं।
1: हाँ
0: हमने रिसर्च की यूनिवर्सिटी में, उस रिसर्च में पाया कि जो लिफाफे हम लटकाते हैं उन लिफाफों में ज़्यादा पैदावार आती है, और जो लटकाए हुए लिफाफे होते हैं उसमें हमको पानी का स्प्रे भी आसानी से किया जा सकता है,
1: इसमें ऐसा क्यों है कि उनमें ज्यादा पैदावार आती है?
0: क्योंकि उसको हवा मिलती रहती है अच्छे से
1: हाँ
0: और नमी भी अच्छे से मिलती रहती है, और जो नीचे लिफाफे रखेंगे हम पानी का स्प्रे करेंगे
1: हाँ
0: तो पानी नीचे जाकर थोड़ा सा जमेगा भी सी, वहाँ
1: हाँ
0: इकट्ठा हो
1: सही
0: जाएगा,
1: बात है।
0: और इकट्ठा होगा तो फंगस आने का खतरा रह
1: हाँ
0: जाएगा। तो हमारे जो लिफाफे हैं, हमने जिस टाइम हमारी 20 दिन के बाद हमने देखा कि उसमें से पिनिंग निकलनी शुरू हो जाती है, छोटी छोटी
1: हाँ
0: पिन की तरह
1: हाँ
0: मशरूम्स निकलनी शुरू हो जाती हैं,
1: हाँ
0: जो हमने 10-12 छेद किए थे उसमें
1: हाँ
0: से निकलती है।
1: हाँ
0: और उनमें से पिनिंग निकलने के टाइम हमको ये ध्यान रखना है कि कमरे को कुछ टाइम के लिए खोलते रहें,
1: अच्छा
0: उस टाइम ऑक्सीजन की ज्यादा
1: कुछ
0: जरूरत होती
1: टाइम
0: है।
1: के लिए खोलने
0: हमने
1: का,
0: 3-4 घंटे 3-4 बार दिन में खोलें और लगभग आधे आधे घंटे के लिए इसको
1: आधे आधे
0: खोलते
1: घंटे के
0: रहें।
1: लिए खोले। क्या कभी ऐसा भी संभव हो सकता है कि भाई हम उसको कमरे को खोल रहे हैं,
0: हाँ जी,
1: अंदर धूप जाने दे क्या
0: नहीं
1: वो?
0: नहीं धूप की इसको जरूरत नहीं है,
1: हाँ
0: सनलाइट की इसको जरूरत नहीं होती,
1: हाँ
0: और तोड़ाई के टाइम हमारे को कमरा थोड़ी देर के लिए पहले खोल के रखना है, अभी बताऊंगा आपको।
1: इसमें दो बातें डॉक्टर साहब
0: हाँ जी,
1: असमंदस में जो हम पूछना चाह रहे हैं आपसे,
0: हाँ जी,
1: कि एक तो ये सनलाइट की जरूरत नहीं होती है, मानते हैं इस बात
0: हाँ
1: को,
0: जी,
1: लेकिन कई बार हमारा कमरा ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे सनलाइट आती है। किस टाइम पे खोले? जब सनलाइट ना हो उस टाइम पे खोलना ठीक है
0: सुबह के
1: या?
0: टाइम हम इसको सुबह और शाम के टाइम खोलें,
1: हाँ
0: और जहां से हमारे सनलाइट आती है वहां पर हम पॉलिथीन लगा दें, और हमारे को थोड़ा टाइम के लिए इसको लाइट भी देनी पड़ती है,
1: हाँ
0: थोड़ा सा लाइट का भी ट्रीटमेंट देना पड़ता है।
1: लाइट
0: तो
1: कैसी लाइट है?
0: हमने बल्ब जला के हम
1: बल्ब
0: इसको,
1: बल्ब जला दें,
0: हाँ जी
1: लेकिन जो धूप की रोशनी है वो सीधी धूप की रोशनी से
0: हाँ जी
1: बचाएं
0: सी हाँ
1: इसको।
0: जी हाँ जी।
1: हाँ
0: तो उसके बाद हमने बिजाई कर दी, हमारी 20 दिन के बाद पिनिंग निकलनी शुरू हो गई,
1: हाँ
0: और वो पिनिंग है जहाँ हो छेद किए हुए थे उन छेदों में से मशरूम्स निकल जाएंगे।
1: हाँ
0: एक बार हमने मशरूम को तोड़ लिया,
1: हाँ
0: उसके बाद जब 1 वीक के बाद हमको फिर दोबारा से उनमें छेद कर देना है,
1: हाँ
0: छेद कर दें थोड़े थोड़े बड़े, उन छेदों में से फिर मशरूम्स निकल जाएगी, और उस समय हमको ध्यान रखना है कि कमरे में नमी बना के रखनी है।
1: हाँ
0: जब भी हम मशरूम लगाएं इसमें नमी बना के रखें, लगभग 80% तक मशरूम में नमी बना के रखनी होती है।
1: ठीक बात।
0: तो हमने नमी बनाने के लिए पानी को हम फर्श पर छिड़क सकते हैं,
1: अच्छा
0: साइडों में दीवारें हैं उस पर भी छिड़क सकते हैं,
1: हाँ
0: और जिस टाइम तुड़ाई करें उसके बाद हम मशरूम के जो बैग हैं उन पर भी छिड़क सकते हैं।
1: ठीक बात।
0: 2 बार हमने तुड़ाई कर ली,
1: हाँ
0: उसके बाद मशरूम्स को, क्योंकि मशरूम्स में लगभग 90% पानी होता है,
1: हाँ
0: जो पानी मशरूम हमने खाद में डाला था वो
1: हाँ
0: खत्म हो गया, तो
1: हाँ
0: हमको अब पानी की ज़्यादा जरूरत है मशरूम को, तो हमने ऊपर से छेद करके उसमें पानी और डाल देना है।
1: हाँ
0: अब पानी तीसरी बार जब हम पानी

0: डाल देंगे, उसमें से फिर मशरूम्स निकलेंगी
1: हम्म,
0: और 3 बार हम इसका फ्लश ले सकते हैं। अब
1: अच्छा
0: ये मशरूम्स की हमारी 5-6 प्रजातियां हैं,
1: हाँ,
0: एक प्लूरोटस सजार काजू है, एक
1: अच्छा
0: फ्लोरिडा है, एक सेपिडस है,
1: हाँ,
0: तो इन किस्मों को हम लगा सकते हैं और ये अलग अलग रंगों की किस्में होती हैं। तो
1: हाँ
0: हमने ये देखा कि जो हमारी प्रोडक्शन है मशरूम्स की, बटन मशरूम्स में एक पॉलिथीन होता है जो 10 किलो का पॉलिथीन होता है, उसमें से 2.5 से 3 किलो तक मशरूम निकलती है।
1: और
0: तो
1: डिग्री
0: हम
1: में
0: इसकी बायोलॉजिकल एफिशिएंसी बोलते हैं 25 से 30% तक।
1: हाँ
0: और ये हमारी जो ढीगड़ी मशरूम है इसकी प्रोडक्शन हमारी 50 से लेके 75% तक हो जाती है। जैसा
1: वाह,
0: कि 1 किलो तूड़े से हम 500 से 700 ग्राम तक मशरूम्स ले सकते हैं।
1: तो
0: और ये
1: इसमें
0: मशरूम ऐसी मशरूम है जो कि खाने में बड़ी स्वादिष्ट होती है।
1: हाँ
0: किसी को इस मशरूम का स्वाद पनीर की तरह लगता है, किसी को इसका स्वाद हमारे मांस की तरह लगता है। और हम ये कहते हैं कि किसान भाई इसको लगाएं और एक बार लगाकर देखें और इसकी हम पैदावार ले सकें। और इस मशरूम्स में बीमारियां भी बहुत कम आती हैं।
1: डॉक्टर साहब, इसमें भी चलेंगे, बीमारियों पे भी चलेंगे। पहले
0: हाँ जी,
1: हम बात करते हैं इसमें कि भाई जो आप बता रहे थे पैदावार 2 से 3 गुना बढ़ जाती है,
0: हाँ जी,
1: तो अलग अलग रंग के बताइए डॉक्टर साहब आपने,
0: हाँ
1: कौन
0: जी।
1: कौन से रंग के हो सकते हैं इसमें?
0: एक पिंक रंग की होती है, पिंक कलर की होती है,
1: हाँ
0: और येलो कलर भी, पीले रंग की भी होती है, और
1: हाँ
0: सफेद रंग की भी है, भूरे रंग की भी है। तो ये हम मशरूम्स की किस्में कोई भी ले सकते हैं, परंतु ज्यादातर जो सफेद रंग की मशरूम्स है उसको मार्केट में ज्यादा प्रेफर किया जाता है।
1: आम तौर पे आपने बात बताई है अभी कि भाई आपने बता दिया कि भाई तरीका क्या है इसको लेने का, भाई खाद तैयार कर दी उसके अंदर, भाई परत लगा दी है जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन के अंदर आप मशरूम का उत्पादन ले रहे हैं, या फिर आपको जो बेडिंग की है आपने उसमें ले रहे हो आप इसमें, लेकिन इस दौरान बीच बीच में क्योंकि एक साइकिल है पूरा उसमें मशरूम लेने का डॉक्टर साहब, तो सावधानी क्या रखे, देखभाल क्या कर सकते हैं बीच बीच में, जो प्रमुख तौर पर देखभाल करने के काम है?
0: सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मशरूम्स हाउस में साफ सफाई का रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हम कमरे में घुसें तो कमरे में घुसते वक्त हमारे को जो कमरे में बाहर गेट बना हुआ है,
1: हाँ
0: गेट पर एक पानी की परत बना दें, थोड़ा सा खड्डे का कच्चा सा पक्का खड्डा सा बना दें और उसमें लाल दवाई का पानी डाल दें और अंदर घुसते वक्त उसमें से पैरों को धो के जाएं।
1: अच्छा
0: और उसके बाद हम सिर पर हम कपड़ा बांध लें, इसके लिए अलग ड्रेस होनी चाहिए अंदर
1: हाँ
0: घुसने के लिए।
1: हाँ
0: और जितनी हम हमारे हाथों को अच्छे से साफ करके जाएं और जितनी हम साफ सफाई रखेंगे मशरूम की उतनी ही पैदावार अच्छी ले सकते हैं। और
1: हाँ
0: मशरूम्स में नमी बना के रखें, तापमान को उचित रखें, और इन दो चीज तीन चीजों को अगर हम सावधानी से रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो हम मशरूम की पैदावार को बढ़ा सकते हैं।
1: टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होनी चाहिए ज़्यादा।
0: हाँ,
1: और
0: टेम्परेचर है जब हमारा लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक
1: हाँ हाँ
0: हमारी जो ऑयस्टर मशरूम है इसको सहन कर लेती
1: नमी की
0: है।
1: मात्रा डॉक्टर साहब कैसे निर्धारित करें, नमी का कैसे पता चले, कितने
0: नमी
1: प्रतिशत होनी चाहिए?
0: नमी हम हमारे पास मीटर आते हैं, नमी के मीटर भी लगा सकते हैं। और बाकी हम मशरूम्स को जो पॉलिथीन है उसको देख के भी हमारे को पता लग जाता है कि इसमें नमी है या सूखापन आ रहा है। सूखापन आ रहा है तो हम पानी का स्प्रे कर सकते
1: कितने
0: हैं।
1: प्रतिशत तक नमी होनी चाहिए?
0: नमी इसमें 80 से 85% तक नमी होनी चाहिए।
1: और अगर इससे कम नमी होगी तो उत्पादन पे असर पड़ेगा
0: हाँ
1: उसका।
0: जी,
1: हाँ, अब डॉक्टर साहब बात करते हैं बीमारियों पे, आप बीमारी बता रहे थे, कौन कौन सी बीमारी आ सकती है?
0: देखो जो ढींगड़ी मशरूम्स है उसमें बटन मशरूम के हिसाब से बहुत ही कम बीमारियां आती हैं। और एक थोड़े से कई बार मोल्ड आ जाता है और वो मोल्ड जो फफूंद होती है, हरे रंग की फफूंद, काले रंग की फफूंद आ जाती है,
1: हाँ
0: वो कई बार हम बीज लेके आते हैं तो बीज से आ जाती है। तो हम कोशिश करें साफ सुथरा बीज लें और उसी को हम प्रयोग करें।
1: बीमारियों के बारे में बात की डॉक्टर साहब, तो बीमारियों का निदान के लिए कोई उपाय?
0: हम बीमारियों के लिए एक तो साफ सफाई करनी है, और दूसरा इस पे हम अगर कोई भी मोल्ड आ जाती है, फफूंद आ जाती है,
1: हाँ
0: तो इसको हम लिफाफे को बाहर निकाल दें और कोशिश

0: करें कम से कम इस पे हम दवाइयों का छिड़काव करें, क्योंकि ये मशरूम ऐसी है जो कि हमने खानी है और दवाइयाँ डालेंगे तो उस पर हमारे पर उसका असर
1: स्वास्थ्य पे
0: जाएगा।
1: बुरा असर पड़ेगा, गुणवत्ता खराब होगी डॉक्टर साहब उसकी। आप बता रहे हो कि जो है इसका जो साइकिल, कितने दिन का साइकिल बताया डॉक्टर साहब
0: इसका
1: आपने तो?
0: साइकिल 50 दिन का है
1: हाँ
0: और इसके कुछ प्रोडक्ट्स भी बनाए जा सकते
1: हाँ
0: हैं।
1: प्रोडक्ट भी बनाए जा सकते हैं। 50 दिन का साइकिल आपने बताया, 50 दिन में तैयार हो सकती है, साल में किसी भी टाइम पे ले सकते हैं इसके। इसमें दो बातें हैं डॉक्टर, दो सवाल है इसमें। एक तो प्रोडक्ट की आपने खुद जिक्र किया है, और इसके साथ में बाजार के बारे में बताओ, दोनों बातें बताओ। पहले
0: जो
1: बाजार, बाजार कैसे ढूंढे, कहाँ पे इसका सप्लाई, कितने दिन के अंदर सप्लाई करें, और फिर प्रोडक्शन इसमें।
0: ये जो हमारी मशरूम्स है
1: हाँ
0: इसको सबसे अच्छी चीज़ है, और इसमें प्रोटीन्स हैं और विटामिन्स भी हैं।
1: हाँ
0: जो प्रोटीन्स, इसमें विटामिन डी अच्छे मात्रा में होता है
1: हाँ
0: और ये विटामिन डी हमारे को सूरज से मिलता है,
1: हाँ
0: और ये विटामिन डी कि हम गोलियां खाने पड़ती है हमारे को।
1: हाँ
0: तो हम एक ऐसी स्टडी हुई है
1: हाँ
0: जिसमें ये पाया गया है कि अगर वीक में, हफ्ते में एक बार ऑयस्टर मशरूम खा लेते हैं तो हमारे को डॉक्टर्स के कम चक्कर काटने पड़ते हैं।
1: ठीक बात।
0: इसके जो प्रोडक्ट हैं,
1: हाँ
0: इसके प्रोडक्ट सब्जी बनाई जा सकती है
1: हाँ
0: मटर मशरूम मटर के साथ,
1: हाँ
0: और इसको कद्दूकस करके परोंठे भी बनाए जा सकते हैं और इसका सूप भी बनाया जा सकता है,
1: हाँ
0: और इस मशरूम्स को हम ड्राइड करके भी प्रयोग कर सकते हैं।
1: हाँ
0: ड्राई करके अगर हम गुनगुने पानी में डाल देंगे तो ये वैसे ही आकार ले लेती है जैसे मशरूम्स हैं, और इसको हम सुखाकर इसका पाउडर बना सकते हैं,
1: हाँ
0: और पाउडर में जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी शक्ल अच्छी नहीं होती, सांप की छतरी की तरह होती है, इसलिए इसको बच्चे खाना कम पसंद करते हैं, तो हम इसका पाउडर बना के हम तरी वाली सब्जी बनाएं उसमें डाल के प्रयोग कर सकते हैं, और इसको हम, इसको जो पाउडर है पाउडर से हम बिस्किट्स में भी प्रयोग कर सकते हैं और पापड़ भी बना सकते हैं, वड़ियों में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके प्रोडक्ट बनाने में ही ज़्यादा फायदा है। हाँ, जहाँ तक मार्केट की बात बताई आपने,
1: हाँ
0: तो मार्केटिंग इसकी बहुत कम है। इसकी
1: हाँ
0: मार्केटिंग दिल्ली में आज़ादपुर मंडी में है।
1: हाँ
0: इसको हम जैसे 1 किलो हमारी मशरूम्स है, हम मशरूम्स को सुखाएंगे तो लगभग 100 ग्राम रह जाएगी, क्योंकि
1: हाँ
0: 90% मशरूम में पानी होता है,
1: ठीक
0: और
1: बात।
0: ये सूखी मशरूम्स 400 से 500 रुपए किलो आज़ादपुर मंडी में बिक जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और हम इसके प्रोडक्ट्स पे ही ज़्यादा ध्यान दें, और हमारे इस मशरूम्स की लोग हरियाणा में बहुत ही कम लगाते हैं,
1: हाँ
0: तो इसको लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो ट्रेनिंग्स हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय
1: तीन जगह
0: में,
1: बता रहे थे
0: 3 दिन
1: आप।
0: की ट्रेनिंग है,
1: हाँ
0: मूर्थल में ले सकते हैं या
1: हाँ
0: सोलन में ले सकते हैं।
1: बिल्कुल, सोलन हिमाचल प्रदेश
0: हाँ जी,
1: जी। तो तीन जगह ट्रेनिंग की व्यवस्था है, 3 दिन की ट्रेनिंग है, वहाँ पे जाके प्रशिक्षण लेके आए। इसके लिए चलते चलते बहुत ही संक्षेप में बताओ, कोई अनुदान मिलता है?
0: हाँ जी, इससे बागवानी विभाग से अनुदान लिया जा सकता है, और जो हम यूनिट एस्टेब्लिश करते हैं उसमें अलग अलग तरह से अनुदान मिलता है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जब मशरूम्स लगाएं, सबसे पहले तो अपने लेवल पर, थोड़े लेवल पर लगाएं,
1: हाँ
0: उसमें अनुदान की
1: आवश्यकता
0: जरूरत
1: नहीं
0: ना
1: होती। हाँ
0: समझें, क्योंकि एक बार आप लगाने में एक्सपर्ट हो जाओगे, ट्रेनिंग
1: हाँ
0: ले लोगे, लगाओगे 1 साल, और सबसे पहले इसको छोटे लेवल पे काम शुरू करना है, कच्चे कमरे में काम शुरू कर सकते हो। एक बार आप प्रशिक्षित हो जाओगे, निपुण हो जाओगे, उसके बाद आप इसको बड़े लेवल पर लगाएं, और इसका अनुदान गवर्नमेंट से, हरियाणा बागवानी विभाग से मिल सकता है, और इसमें आप यूनिट एस्टेब्लिश करोगे उसका अनुदान मिलता है, और बीज उत्पादन यूनिट बनाओगे उसका अनुदान मिलता है, पक्के कमरे बनाओगे उसका भी अनुदान ले सकते हैं।
1: जी। तो डॉक्टर साहब, अब अगर अच्छी किस्मों का चुनाव करें, और भाई इसके लिए भाई कोई अच्छा सा प्रशिक्षण ले, फिर बाद में अगर इसकी खेती की शुरुआत करें, तो हम जो मशरूम है का, विशेषकर आपने डिंगरी की बात करी है, उससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, और फिर उसके साथ में हम कुछ अच्छी आमदनी का जरिया बना सकते हैं। और साथ के साथ में अगर हम इसके प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट बनाएँ, तो अपना जो मुनाफा है वो काफ़ी हद तक वो बढ़ जाएगा, काफ़ी मात्रा में बढ़ जाएगा, जिससे किसान भाई अपने लाभान्वित हो सकते हैं। तो डॉक्टर राकेश कुमार जुग जी, आप चौपाल में आए, आपने मशरूम डिग्री पे किसान भाइयों को जानकारी दी, उनको जागरूक किया, इन सब के लिए आप

0: आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
1: धन्यवाद।
2: तो यह सुनी भैया ने बातचीत और ये बाई समय हो रहा है रागनी का, तो रागनी भाइयन सुनवाओगे रणबीर सिंह बड़वासनिया और पासी नैयर अपनी पार्टी के साथ।

갔다 와 이 매일 살 이

ਅੱਧੇ ਬਾਦ ਕੌਣ

0: आकाशवाणी का यूरोप केंद्र है और ये भाई कार्यक्रम सुनेंगे आपकी पसंद, और आपकी पसंद की शुरुआत करेंगे भाई पल्ले राम दैया और साथिया की गायु रागिनी के साथ। और इसने पसंद करने वाले श्रोता होंगे जनपद बागपत उत्तर प्रदेश से श्रोता हैं सुरेश पहलवान, कृष्ण पाल डबास, अनुज डबास, राजेंद्र डबास, अजय, नीटू डबास, विनोद डबास। और इसी रागिनी ने पसंद करे हैं ग्राम काठा जिला बागपत उत्तर प्रदेश से सुरेंद्र पाल, तेजपाल, प्रमुख राजेंद्र सिंह, जोगिंदर सिंह, सतवीर, विकास, विशाल। ग्राम गैसी उर्फ गादी से हैं बलदेव सिंह, आर्य, काशीराम दलाल, रामपाल दलाल, दयानंद और धर्मवीर दलाल। अर्पित, प्रियांशी, हरिओम सहरावत, ओमपाल सहरावत, सन्नी सहरावत, निमेश नैन, अनुज नैन और रिडकू कमल, अश्विनी चौधरी। और ग्राम कस्बा छपरौली बागपत से हैं जसवंत सिंह खोखर, राजकुमार, अनिल और सुनील कुमार, प्रवीण कुमार खोखर, सुमित कुमार, विनीत कुमार खोखर, सचिन खोखर, मोक्ष और तनुज खोखर। गांव डिकाणा बागपत उत्तर प्रदेश से हैं जयपाल तोमर, राजकुमार और रोहित तोमर। और इसी रागनी ने भाइयों पसंद करे हैं लोको कॉलोनी लोहारू से बिल्लू सिंह चिंडालिया और लक्ष्मी देगी, सुरेंद्र कुमार चिंडालिया, योगेंद्र कुमार, रविंद्र कुमार, शंभु दयाल। और अगले श्रोता हैं गांव फ्रासी से राजकुमार डूडी, सरजीत प्रमोद, आशी, शहर से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी। तो सुनो भाई अपनी ये पसंद।
1: अब किच्चक द्रौपदी को देखते हैं और बड़ा हैरान हो जाता है। द्रौपदी किच्चक को समझाती है, महाराज आपको सोचना चाहिए, परंतु किच्चक के दिल में तो यही बात थी, क्योंकि उसकी तरफ जोर जोर से घूर कर देखता हुआ वह उसको समझाती कि महाराज आपको सोचना चाहिए।

సదన ఉసన ఎందరికీ పదవీ పాయి పతివర్త సచి కే సంగిన అని

ये तो सुनी बहन नेपाली रामदेव और साथियों गायु रागनी। अगली प्रस्तुति बहन सुनाओगे अजीत सिंह और साथियों गायु रागनी। पसंद करने वाले श्रोता इसमें रहोगे पट्टी मेर बड़ोत सिंह, रामानंद कश्यप, विमलेश, सचिन, ज्योति, पालेराम, आयुष, आरन, आदित्य, दादरी गेट भिवाणी सिंह, कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, लड़किरण मेहला और कुणाल मेहरा। इसी रागनी ने पसंद करे हैं रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। अगले श्रोता हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से मिका विरक, बलविंदर विरक, जितेंद्र विरक और लाल मस्जिद भिवाने से हैं संयम पोपले दर्शन और प्रवीण अमित और तुलसी, गीता, दीक्षा, निश्चित और राहुल रहेजा। तो सुनो भाई अपनी पसंद की ये रागनी।

ये तो सुनी बहन अजीत सिंह और साथियों गायु रागनी कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति बहन सुनवाऊंगे रणबीर सिंह बड़वासनिया और नीलम चौधरी है अपनी पार्टी के साथ। पसंद करने वाले श्रोता इसमें रहोगे वीरवान पन्ना भिवानी से हैं सुशील कुमार सोनी पवन कुमार सोनी भविष्या रानी कमल सोनी साहिल सोनी और प्रेम कला देवी ओम प्रकाश सोनी सुशील कुमार सावड़िया। अगले श्रोता हैं अलीका तहसील डबवाली से है रूप सिंह लखोत्रा करमजीत सरोजीत और रानी रोनू और रजनी। तो सुने भाई अपनी पसंद की ये रागनी।

ये तो बयान सुनी रणबीर सिंह और नीलम चौधरी थी अपनी पार्टी के साथ। कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति बयान सुनवाएंगे पासी नैयर अपनी पार्टी के साथ। तो पसंद करने वाले श्रोता इसमें होंगे कस्बा बराड़ा जिला अम्बाड़ा से हैं रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, ज्योति आकृति और जय राहुल, बीरेंद्र जय जान। और इसी राग ने पसंद करे हैं गांव नीमड़ी जिला दादरी से हैं सुरेश कुमार, अत्तर सिंह, बलमत, जगदीश कुमार और कृष्ण कुमार, धर्मा नंबरदार और ताई घोगड़ी देवी, और बोंद कला से हैं श्रोता गीसा सिंह। और इसी रागनी ने पसंद करे हैं गांव लुदेसर से हैं पप्पूराम घाट, संतोष देवी, लक्ष्मी देवी, प्रियंका, साक्षी, रुचिका। अगले श्रोता हैं डबवाली से हैं जेके बाकोलिया, श्रीमती सुनीता बाकोलिया, संजय, अनिल, मीनू बाकोलिया। और अगले श्रोता हैं गांव जाखोद से हैं शंभु दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरपाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। और इसी रागनी ने पसंद करे हैं शिकारपुर यूपी से हैं बबली कुमार प्रजापति, श्रीमती पुष्पा देवी, डोली, दीपांशु, भीम अभिषेक। तो आप सुनो भाई अपनी ये पसंद है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण संसार, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में आज हम पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं, कटी पतंग फिल्म से। आवाज़ किशोर कुमार की, गीतकार हैं आनंद बख्शी साहब, संगीत दिया है RD बर्मन ने।

0: अभी आपने सुना गीत कटी पतंग फिल्म से। कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे शबनम फिल्म से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार हैं जावेद अनवर।
1: या हबीब।

अभी आपने सुना गीत शबनम फिल्म से, कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे अनामिका फिल्म से। आवाज़ किशोर कुमार के, गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, गीतकार संगीतकार हैं

अभी आपने सुना गीत अनामिका फिल्म से। कार्यक्रम में अगला गीत है वो कौन थे फिल्म से, आवाज़ लता मंगेशकर की जादुई ध्वनि। गीतकार हैं राजा मेहंदी अली खान। सुनते हैं लता मंगेशकर की जादुई आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे गीत वो कौन थे फिल्म से। अगला गीत है चोरी चोरी फिल्म से, आवाज़ लता मंगेशकर की और मना डे की। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: इस मधुर गीत के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं अनोखी अदा फिल्म का गीत, आवाज़ किशोर कुमार की, गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: क्या है दिलों का न पूछो सनम आपका।

अभी आपने सुना गीत अनोखी अदा फिल्म से, अब आप सुनेंगे चलती का नम गाड़ी फिल्म से। आवाज़ आशा भोसले की और किशोर कुमार की, गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी।

चलती का नाम गाड़ी फिल्म से अभी आपने सुना गीत। कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे महेंद्र कपूर और बलबीर की आवाज़ में, फिल्म का नाम मेरे हम सफ़र। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

मेरे हमसफर फिल्म का गीत अभी आपने सुना, अगला गीत सुनेंगे दोस्ताना फिल्म से, आवाज़ किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार हैं आनंद बख्शी साहब, संगीत या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: दोस्ताना फिल्म के इस गीत के बाद अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की ही आवाज़ में महबूब की मेहंदी फिल्म का गीत। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी।
1: ये जो चिल्म

अभी आपने सुना गीत महबूब की मेहंदी फिल्म से। अगला गीत आप सुनेंगे आँखें फिल्म से। आवाज़ लता मंगेशकर की, गीतकार हैं साहिर लुधियानवी।

0: कभी कभी।
1: आंखें फिल्म के इस गीत के बाद हम आपको सुनवाते हैं दो बदन फिल्म का गीत, आवाज आशा भोसले की, गीतकार हैं शकील बदायूं, संगीत निर्देशन किया रवि ने।

इसी गीत के साथ आज का ये अंक फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज कलाकार हैं आस्था वर्मा।

0: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा, जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज

0: दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
1: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
2: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और जिस व्यवसाय जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov

0: www.rti.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच दो सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
1: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन ना करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम ना बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने ये भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और ABC मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और US ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट नाउ।

एक फिल्म से कार्यक्रम में आज आपने सुने हम आपके हैं कौन फिल्म के कुछ गीत। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया रेले की प्रतीक्षा करें।

0: स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका जेना। विज्ञान भारती के माध्यम से हम विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों, पहलुओं, उपलब्धियों और समाचारों को आप सबके साथ साझा करते हैं। आज के विज्ञान भारती के संक में भी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को आप तक पहुँचाएंगे। रहिए हमारे साथ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है भेंट वार्ता, भूकंप का विज्ञान, भूकंप क्यों आते हैं। इन विषयों पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत विज्ञान की इस घटना भूकंप के बारे में बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर विनीत गहलोत,

0: भूकंप है क्या?
1: क्या भूकंप आने से पहले कुछ विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जो भूगर्भ वेत्ता हैं उन्हें, जिनके द्वारा हमारे लोग हैं उन्हें मैसेज हो सके?
2: जो हमारी प्रकृति है उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नेचुरल हैं, ना तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल है और ना आपको उस पर कोई कंट्रोल कर सकते हैं और ना आपको करना चाहिए। उनमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और वो प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से आप जितना भी भूखंड देखते हैं, जितने भी महाद्वीप देखते हैं या जितने भी द्वीप देखते हैं समुद्र के अंदर, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी संरचना देखते हैं आज की तारीख में, वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और वही एक प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको आप ना तो रोक सकते हैं और ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बात सच है कि अगर भूकंप नहीं होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, और प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, धरती को आप जीवित प्लैनेट कहते हैं, धरती को हम जो कहते हैं जीवित प्लैनेट, उसकी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तो चलना ही है और ये चलती ही रहेंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रक्रिया है जिसके चलते ये सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, हिमालय बना है, महासागर में जो आइलैंड बेल्ट है जिसे द्वीप कहते हैं वो बने हैं, वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बना है। और वही प्लेट टेक्टोनिक्स है जो कि अर्थक्वेक को मिलाती है। तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। उसके अलावा हमारी कुछ अपनी गतिविधियां हैं, जैसे माइनिंग की एक्टिविटीज, खनन का काम करते हैं, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। कई बार हम लोग आजकल जैसे ऑयल और गैस निकाल रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो कई बार कोई डैम बना दिया, उसकी वजह से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भूकंप और सबसे असंख्या जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होती है। पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें, वहां पे पैसिफिक प्लेट एक सिंगल प्लेट है
0: जी।
2: उसके चारों तरफ फिर ये कई सारी प्लेट है। जब भी दो प्लेट के बीच की बाउंड्री होगी उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जैसे कि हिमालय है, वहां जो कि सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं, वहां पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो जो रिंग ऑफ फायर है वहां पे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन चारों तरफ है, यानी कि चारों तरफ आपके पास वहां पे बड़े बड़े भूकंप आने की जगह है। अगर हिमालय के उसमें कहें तो चारों तरफ आपके वहां पे हिमालय जैसी संरचनाएं हैं जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हमारा जो हिमालय है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में नहीं आता है। हमारा जो हिमालय है उसको हम लोग अल्पाइड हिमालयन साइस्मिक बेल्ट कहते हैं, यानी कि आल्प्स शुरू होके फिर वो जैग्रोस यानी कि ईरान, इराक, और फिर सुलेमान किरथार पाकिस्तान में होके फिर उसके बाद हिंदू कुश, और उसके बाद फिर हिमालय, फिर उसके बाद अराकान योमा, और उसके बाद फिर अंडमान सुमात्रा बांदा, ये वाली जो चेन है उसमें भी हिमालय आता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स की कॉन्टेक्स्ट में इसमें बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कहती है कि सारी प्लेटें गतिमान है। अब उस प्लेट को चलाना कैसे है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो प्लेट है जब रगड़ रही है आपस में तो क्या वो आसानी से एक दूसरे के अंदर समा जा रही है या वो रुक रुक के जा रही है
0: जी।
2: अगर वो प्लेट रुक रुक के जा रही है तो यानी कि रुक रही है, इसका मतलब उसमें ऊर्जा संचित हो रही है, और उसके बाद जब वो ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो ऊर्जा निकल जाती है, तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जब भी कोई भी छोटा हो या बड़ा भूकंप हो, इसका मतलब वो अपने अंदर जो ऊर्जा संचित हुई थी जिसका कि मेन कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है, उसको रिलीज कर रहा है। तो यानी कि जो छोटे भूकंप होते हैं उसमें बहुत छोटी ऊर्जा जो है निकलती है, और जो बड़े भूकंप होते हैं उसमें बड़ी ऊर्जा निकलती है। लेकिन यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से जब हम इसको लिविंग प्लैनेट या डायनामिक प्लैनेट कहते हैं, कि मतलब ये इसमें सारी प्लेट गतिमान है, और जो वो गति है वो अर्थक्वेक की वजह से ही होती है। अगर किसी इलाके में बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है छोटे छोटे भूकंप के रूप में, हालांकि वो रिलेशन इतना लीनियर नहीं है, लेकिन हाँ वो दो चीजों को बता रही है कि एक तो ये कि ये इलाका भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, कोई बड़ा भूकंप आ सकता है। लेकिन अगर उसकी ऊर्जा इतनी निकल पा रही है जितनी कि उस प्लेट मोशन में जरूरत थी, तो फिर इसका मतलब बड़ा भूकंप आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत ही लोग कैजुअली लेते हैं, जो कि एकदम गलत है। छोटे भूकंप का आना ये नहीं बताता है कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा। छोटे भूकंप का आना ये बताता है कि ये इलाका भूकंप प्रभावित है और यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग भूकंप के हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, हम लोग कौन से इलाके हैं वो कहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, वहाँ पे कैसे भूकंप आते हैं, वहाँ पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है, और अगर वहाँ पे बड़ा भूकंप आएगा तो उससे क्या हानि हो सकती है, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे की हानि ज्यादा होगी या हानि कम होगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं क्या इससे हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, वो एक पार्ट है जो हमारे साइंस का जो अभी भी अछूता है, जिसके बारे में हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं। हम ही नहीं, सारे विश्व उसके बारे में प्रयास कर रहा है। एनडीएमए की वेबसाइट पर जाएं तो जो आपका साधारण मकान जो घर का बनाना है, साधारण स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए

0: वो वहां पे मौजूद है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये हमारे पास एक टेबल है, तो मैं जरा देख लूँ इसको कि ये टेबल कितनी मजबूत है। अगर ये टेबल मजबूत है तो अच्छा होगा कि मैं इसके नीचे घुस जाऊँ, बजाय इसके कि बाहर भागूं और उसके बाद अनेसली और कोई रिस्क लूँ, तो अच्छा होगा कि मैं इसके टेबल के नीचे घुस जाऊँ। सबसे बड़ा जो उनका मोटो है वो ये है कि ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ये तीन वर्ड वो यूज करते हैं कि ड्रॉप यानी कि आप जहां भी हैं वो नीचे गिर जाएं किसी सुरक्षित, जैसे पलंग है, बेड है, बेड बहुत मजबूत होता है, आप उसके नीचे घुस जाएं, आप किसी टेबल के नीचे घुस जाएं, तो वो सबसे अच्छी जगह है। ड्रॉप हो गया, कवर, उस अपने आप को कवर कर लें, सिर को कवर कर लें आप ऐसे करके, क्योंकि सबसे जो आपका जो नाजुक चीज है वो सिर है आपका, तो सिर को आप कवर कर लें, और होल्ड, और वहां रहें जब तक कि वो कंपन बंद नहीं हो जाए। तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाला जो सिद्धांत है वो काफी आजकल सब लोग इसको फॉलो करते हैं, और स्कूल में यही सिखाया जाता है, ड्रॉप कवर एंड होल्ड। जो पूर्व तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो जब आपके सामने इतनी भयंकर कोई विपत्ति आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपकी केवल पूर्व ट्रेनिंग ही काम आती है जो आपको बचा सकती है। तो इसलिए पूर्व ट्रेनिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर लोग भूकंप को लेके काफी अजीब अजीब तरह से बात भी करते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं और कहते हैं कि साहब भूकंप इसलिए आ गया या उसलिए आ गया, तो अफवाहों पे ध्यान ना दें, सबसे पहला काम तो यही है। और दूसरा ये है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता, जो कमजोर बिल्डिंग है वो लोगों को मारती है। आज तक का इतिहास अगर उठाकर देखें तो किसी एक भूकंप ने, खाली भूकंप ने किसी आदमी को नहीं मारा है, जो हानि हुई है वो केवल इसलिए कि जब हम लोग असुरक्षित घरों में थे और वो घर हमारे पर गिर गए और फिर डेथ हो गई। तो घरों को सुरक्षित बनाए, पहले से तैयारी रखें, जैसे अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये भूकंप वाला क्षेत्र है, तो हमें पहले से हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि अगर भूकंप आएगा तो हम कहां जाएंगे, कहां भागेंगे, कैसे भागेंगे और क्या करेंगे। अब कम से कम जितने हमारे पास आंकड़े हैं या जितनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है, तो हमें मालूम है कि भूकंप कैसे आते हैं, हमें मालूम है कि भूकंप क्यों आते हैं। हाँ, बस एक ही समस्या जो हमारे साथ है वो ये है कि अगला भूकंप कहाँ आएगा ये हमें पता है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में थोड़ी समस्या है। उसके बारे में अभी भी शोध जो है वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी अभी भी परेशानियां हैं, लेकिन भूकंप कैसे आता है इसके बारे में हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स कंट्रोल होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भूकंप का विज्ञान विषय पर डॉक्टर विनीत गहलोत, निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून से भेंट वार्ता। अब सुनिए उत्तराखंड रत्न से सम्मानित ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के विचार। डॉक्टर लक्ष्मीकांत हमें बता रहे हैं कि कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और किस प्रकार रेडियो आज भी किसानों का विश्वसनीय साथी बना हुआ है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
2: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आकाशवाणी की और भारतीय कृषि की, दोनों ने एक लंबा सफर साथ साथ तय किया है, क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की भारतीय कृषि के विकास में?
3: ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है आज के लिए, और मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो आकाशवाणी और कृषि दोनों बिल्कुल हाथ बांधे साथ साथ इनका सफर रहा है। 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आजादी के बाद देश में जो अनाज था उसका एक बड़ी कमी थी, और जो 1964 में जो डॉक्टर बोरलॉग जो नोबल लॉरेट थे, उनका जो गेहूं का जो जनन सामग्री थी, जब वो यहाँ पर ला करके जब टेस्ट की जा रही थी, तो उससे जो पैदावार में बढ़ोतरी हुई, तो वो एक जिसको हम आधुनिक कृषि कहते हैं, जिसमें आपके उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, खाद पानी इन सब आगतों का जो प्रयोग किया गया, और उससे जो जिसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जो हरित क्रांति आई, तो ये जो हमारे किसान थे उनके लिए नई चीजें थी
2: जी।
3: और आज का समय तो बहुत सारे प्रसार के साधन आ गए हैं, तो उस समय सबसे प्रभावी जो साधन था वो रेडियो था, क्योंकि रेडियो की पहुंच जगह जगह थी और सुदूर क्षेत्रों में भी रेडियो की पहुंच थी। तो इसलिए ये सोचा गया, जो उस समय भारत के जो कृषि मंत्री थे, तत्कालीन कृषि मंत्री भारत रत्न सी सुब्रमण्यम साहब
2: जी,
3: उन्होंने देखा कि जो अमेरिका है इसमें रेडियो की सफलता कृषि के प्रचार प्रसार में काफी हुई है, तो उन्होंने 7 आकाशवाणी के जो केंद्र थे उस पर फार्म एंड होम यूनिट जो है शुरू करवाए
2: जी।
3: तो इससे भारत में जो कृषि प्रसारण के एक नए युग की इसकी शुरुआत हुई। इसने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कृषि तकनीकों को आम जो कृषक है हमारे सुदूर क्षेत्रों में उन तक पहुंचाने में और उनकी जीवन शैली को सुधारने में और उनका जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम ने निभाई। मैं तो पहाड़ में ही रहा हूं तो मैंने देखा है कि हम लोग रेडियो को अलग अलग जगह पे ले जा करके उसको रखते थे कि कहां पे साफ सुनाई दे रहा है।

0: कई बार वो साफ नहीं सुनाई देता था। उस समय ये आकाशवाणी लखनऊ से ट्रांसमिशन होता था और नजीबाबाद उसको रिले करता था
1: जी,
0: और वो सुनाई नहीं देता था। और ये भी युग था कि टीवी तो था नहीं
1: जी,
0: मोबाइल भी नहीं था और केवल रेडियो ही एक होता था, और शाम को जब कृषि जगत उस पर लगता था तो उसको एक जगह पे लगा के गांव के सारे लोग सुनते थे उस पे
1: जी।
0: तो आज क्या हो गया है कि जो डिजिटल युग आया उससे ये स्पष्ट सुनाई देने लगा। आज तो हर किसी के पास में स्मार्टफोन, अधिकतर गाँव में भी स्मार्टफोन है। जहां पे नेटवर्क की समस्या है वहां तो अभी भी रेडियो ही चल रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों के आसपास में नेटवर्क अच्छा है तो उसमें इसके थ्रू इसके प्रचार प्रसार में और कृषि के जो ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार में बड़ी मदद मिली है। कई लोग अभी भी जो किसान भाई हैं वो जो आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं कृषि से संबंधित कार्यक्रम, वो सुनते हैं और बताते हैं, साहब हमने उसमें सुना था ऐसा ऐसा, फला वैज्ञानिक ने ऐसा बताया था और उसको हमने प्रयोग किया
1: जी।
0: तो अभी भी ये लोग इसमें रुचि लेते हैं और सुनते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है इस सब तक पहुंचना, इंडिविजुअल आदमी को पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। रिपोर्टर्स हैं वो जब जाकर के किसानों के खेत पे जाकर के उसकी जो सक्सेस स्टोरी को लेकर के आते हैं, और किसान जो है ना जब वो अपने साथी किसान के जुबान से सुनता है कि सफलता की कहानी, तो उसको ज्यादा भरोसा होता है
1: जी।
0: तो और उसके अंदर एक ये विश्वास होता है कि भाई इस आदमी ने ये किया है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ
1: जी जी।
0: कृषि में एक्चुअली सारा कुछ आ जाता है, पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी, रेशम पालन भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या मुर्गी पालन है, बागवानी है, ये सब कृषि के ही अंग हैं। अभी भी अगर गांव का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी नहीं है
1: जी।
0: तो इन चीजों को लगातार इस पर समसामयिक कार्यक्रम होते रहे, इन योजनाओं की जानकारी किसानों को मिलती रहे, तो उससे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी दशा बहुत सुधार की जरूरत है उसमें
1: जी।
0: तो उसमें ये जो आकाशवाणी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा।
2: आकाशवाणी का कृषि के विकास में योगदान विषय पर जानकारी साझा कर रहे थे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर लक्ष्मीकांत, निदेशक ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। कार्यक्रम के अगले खंड में अब बातचीत कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण पर, और ऊर्जा संरक्षण के इस विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
3: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि भारत जैसा जो देश है, जो विकसित हो रहा देश है, इसमें ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आज के समय की बात करें तो जो हमारा देश है इसमें चुनौतियां क्या आप समझते हैं ऊर्जा को लेकर?
4: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है, चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है, क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इंपॉर्टेंस है, महत्व है, और इससे हम इसको इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है
3: जी।
4: आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो उसका करीब 70-75% हम से पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में लगा देता। अब उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे ऊपर काफी बड़ा बोझ रखता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, तो ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते हैं, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है, और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें, ये बहुत, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9

0: महीने 10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य की ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं। तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स पे काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं, भारत में हवा की अवस्था ठीक है, तो इस तरीके की वैकल्पिक ऊर्जाओं पे हमें काम करना पड़ेगा।
1: ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? डॉक्टर राजेश त्रिपाठी एसोसिएट प्रोफेसर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून से जानकारी साझा कर रहे थे। आइए अब जान लेते हैं जून महीने में जन्मे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियां और विज्ञान जगत को दिए गए उनके योगदान। साथ ही जून महीने में जिन वैज्ञानिकों की पुण्यतिथि आती है उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान को भी हम याद कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं जून के इस महीने में जन्मे और दिवंगत हुए विज्ञान जगत के महान व्यक्तित्व के बारे में। विज्ञान का इतिहास उन महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक गाथा है जिन्होंने अपनी खोजों और विचारों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी। जून महा विज्ञान जगत के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की, जिनका जन्म 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण प्रस्तुत किए। उनके सिद्धांतों ने रेडियो, टेलीविजन और आधुनिक वायरलेस संचार तकनीक की नींव रखी। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की, उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा और द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को समझने में उनकी भूमिका आज भी इतिहास में अमूल्य मानी जाती है। जून माह में हम नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन वैज्ञानिक जेरोम कार्ले को भी स्मरण करते हैं, जिनका निधन 6 जून 2013 को हुआ। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वैज्ञानिकों को अणुओं की संरचना समझने में सहायता मिली। इसी क्रम में कैनेथ जी विल्सन, जिनका निधन 15 जून 2013 को हुआ, उन्होंने पदार्थों के व्यवहार और फेज ट्रांजिशन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी विचारक जेम्स मार्टिन का निधन भी 24 जून 2013 को हुआ था। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इन महान वैज्ञानिकों का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले जा सकते हैं। अब सुनिए एक विशेष वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़। गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर तकनीक ने संचार और डिजिटल क्रांति को किस प्रकार नई गति दी है।
2: ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी अर्थ प्रकाशिक तंतु होता है। यह कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना एक बहुत ही पतला और लचीला तार होता है। इसका उपयोग प्रकाश के संकेतों के माध्यम से बहुत तेज गति से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यह तार की दीवारों से टकराकर बिना बाहर निकले आगे बढ़ता रहता है। इस तरह यह बाल के समान पतला तना प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचरित करने के लिए तरंग मार्ग का काम करता है। यह आधुनिक उच्च गति इंटरनेट और दूर संचार का आधार है, जो विशाल बैंडविड्थ और लगभग तात्कालिक संचार को विशाल दूरी तक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर की संरचनात्मक परतों के कारण संभव होता है। इसकी बनावट में मुख्य अवयवों में प्रथम कोर होती है, जो भीतरी अत्यधिक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का तार होता है, जहाँ से प्रकाश वास्तव में गुजरता है। द्वितीय अवयव आवरण होता है, जो प्रकाश के कोर के चारों ओर लिपटी हुई एक बाहरी परत होती है। इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। घनत्व में यह अंतर दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश कोर के अंदर ही रुक जाता है। तीसरा अवयव बफर कोटिंग और जैकेट होता है। यह बाहरी सुरक्षात्मक प्लास्टिक और रबर की परतें, जो नाजुक कांच को किसी भौतिक नुकसान, नमी और झुकने के तनाव से बचाती हैं। परंपरागत तांबे के तारों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। कुछ

0: के लाभों को अगर देखें तो यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप EMI या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश पूरी तरह से कोर के अंदर समाहित होता है और विकिरण नहीं करता है। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को तोड़े बिना उसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है, जिससे यह अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। प्रकाश लगभग तात्कालिक गति से यात्रा करता है, जिससे केबलों को हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करने, AI क्लाउड नेटवर्क चलाने और वैश्विक डेटा को रूट करने की लगभग असीमित क्षमता मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य अनुप्रयोगों में इंटरनेट और दूरसंचार शामिल हैं। ये आधुनिक वैश्विक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो फाइबर टू द होम, FTTH, ब्रॉडबैंड, समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल और उच्च क्षमता वाले टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क प्रदान करते हैं। सोचिए, यदि इंटरनेट न हो तो जीवन कैसा होगा? सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा, और हम विज्ञान में और मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के युग में किसी भी कंप्यूटेशन के लायक नहीं रहेंगे। मेडिकल इमेजिंग में लचीले ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टरों को एंडोस्कोप और लेप्रोस्कोप जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने और देखने की अनुमति देता है। इस तरह शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, इससे डॉक्टर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और तदनुसार बीमारी देखकर इलाज करना आसान और सटीक हो जाता है। निश्चित ही चिकित्सा जगत में यह एक चमत्कार की तरह प्रयुक्त होता है। रक्षा और एरोस्पेस में इसका उपयोग अत्यधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, विमान वायरिंग और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रकाश संकेतों के आसानी से रोका या जाम नहीं किया जा सकता। आधुनिक लड़ाइयों में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे दुश्मनों के क्षेत्रों की सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। अतः किसी भी देश के लिए रक्षा एवं एरोस्पेस में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। औद्योगिक सेंसर फाइबर ऑप्टिक सेंसर का उपयोग पुलों, इमारतों और तेल पाइपलाइनों में तापमान, दबाव और संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित फाइबर से आधुनिक तरीके से मानव रहित प्रणाली से बड़ी चालाकी से कार्य किया जाता है।
1: अभी आपने सुनी ये वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़ विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नैथानी, सेवानिवृत्त विभाग अध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग, जी गोपाल रेड्डी कैंपस, गढ़वाल विश्वविद्यालय, पौड़ी से। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उनके प्रभाव पर महत्वपूर्ण भेंटवार्ता पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एवं AIG अस्पताल हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर जीवी राव, इनसे बातचीत कर रही हैं सीमा कुमारी।
2: डॉक्टर जीवी राव जी, चिकित्सा के क्षेत्र में के उल्लेखनीय योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। चिकित्सा क्षेत्र में आपका सफर जो है वो कई दशकों से फैला हुआ है। आप यहाँ के जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और अब आप उस शीर्ष स्थान में पहुंचे हैं जहाँ आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गैस्ट्रिक के जो पेशेंट्स हैं आजकल, उनके लिए कौन कौन सी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो उपलब्ध हैं अपने भारत में?
3: भारत तो इतना आगे जा चुका है कि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आना ना हो भारत में आ जाता है, और ये टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर साहब की दुआई से अभी इंडिया में भी बन रही है। अभी तो इसके पहले जो टेक्नोलॉजी खाली मेन सिटीज में रहता था, अभी तो गांव-गांव फैल चुका है। अभी ये गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी जो स्पेशलिटी है, बोथ मेडिकल और सर्जिकल जो स्पेशलिटी है, इसमें जो उन्नति हुई ये एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, ये तीन स्पेशलिटीज के वजह से सर्जरीज बहुत मिनिमली इन्वेजिव हो गए और रिकवरी बहुत हो गया। समझो आज एक्चुअली मेजॉरिटी इंडिया में जो फैमिली जो रहते हैं उनका फैमिली में एक ब्रेडविनर रहता है। अगर ये आदमी कोई बीमारी से काम पे ना जाए तो सारी के सारी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव जो एंडोस्कोपी हो, लैप्रोस्कोपी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, इसके वजह से जो भी चिकित्सा करे आदमी जल्द से जल्द रिकवर होके अपने काम पे लग जाता है। सो इससे वो बहुत आसान हो गया कि द फैमिलीज आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड नाउ बाय दिस। वी गो थ्रू रेगुलर मेडिकल चेकअप्स और जो भी डेटा है, मैं तो एक आदमी हूँ, मैं तो मेरा पूरा डेटा, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ मेरा एक डिजिटल ट्विन है हॉस्पिटल में, सिस्टम में जो भी मेरा डेटा है पूरा उसमें रिकॉर्डेड है।
2: जी,
3: तो दैट टेक्स केयर ऑफ माई दिस थिंग एक्चुअली।
2: थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जीवी राव, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, निदेशक AIG अस्पताल हैदराबाद से चिकित्सा

क्षेत्र में तकनीक और नवाचार विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। श्रोताओं, अब बात करते हैं जून 2026 में विज्ञान और अंतरिक्ष जगत की कुछ प्रमुख घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले बात नासा के बहुप्रतीक्षित नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की। 21 जून 2026 को ये अत्याधुनिक दूरबीन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच गई। इस दूरबीन को हबल स्पेस टेलीस्कोप की उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये हबल की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक क्षेत्र का अवलोकन कर सकेगी। इसके माध्यम से डार्क एनर्जी, दूरस्थ आकाश गंगाओं तथा हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने की उम्मीद है। अब बात यूरोप की एक बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धि की। 17 जून 2026 को फ्रेंच गायना के कुरू प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 6 रॉकेट ने एक ही मिशन में 36 इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस सफलता से वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं चीन ने अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। चीन के त्यांगोगोंग स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी वातावरण में धान की खेती के प्रयोग कर रहे हैं। ये शोध भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खाद्य उत्पादन संभव हो जाता है तो लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा मिल सकती है। अब रुख करते हैं मंगल की ओर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस यानी के जून 2026 में मंगल ग्रह पर अनेक विशाल धूल के बवंडरों जिन्हें डस्ट डेविल्स कहा जाता है की तस्वीरें भेजी। इन चित्रों के अध्ययन से वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वातावरण, मौसम और जलवायु को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। जून 2026 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन परीक्षणों, माइक्रोग्रेविटी अनुसंधानों तथा महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तैयारियों में हुई प्रगति की जानकारी साझा की। ये उपलब्धियां भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अब बात करते हैं जून माह के आकाशीय नजारों की। 21 जून 2026 को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन यथार्थ ग्रीष्म अयनांत मनाया गया। इसके अलावा जून माह में शुक्र और बृहस्पति ग्रहों का सुंदर संयोजन खगोल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं बुध ग्रह का सायंकालीन दर्शन भी आकाश प्रेमियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया। निसंदेह जून 2026 विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों, नई संभावनाओं और नई खोजों का महीना साबित हुआ। तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे आपको नए विचारों के साथ, नवीन जानकारियों के साथ। आज के विज्ञान भारती की प्रस्तुति आकाशवाणी देहरादून की थी। वाचन स्वर प्रियंका जेना का, प्रस्तुति संकल्प मिश्रा। मिलते हैं विज्ञान भारती के अगले एपिसोड में। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी कि 1143 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। समृद्ध संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे प्रभात ने संतूर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपने सबसे पहले श्री दुलाल रॉय से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इससे पहले आपने लंबे समय तक उस्ताद साबिर खान से तबला सीखा, जिससे आप में लय और ताल की गहरी समझ विकसित हुई। आपने संतूर की विधिवत शिक्षा पंडित तरुण भट्टाचार्य और पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी से प्राप्त की। वर्तमान में आप सारंगी वादक पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान और सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान से वाद्य संगीत की बारीकियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। संगीत में MA करने वाले प्रभात ने गायन और वाद्य संगीत की विभिन्न शैलियों का ऐसा समन्वय विकसित किया है जिससे उनका संगीत मधुर और पारंपरिक

0: दोनों बन गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक ग्रेट कलाकार प्रभात ने भारत के साथ साथ यूरोप में भी व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं। आपने स्पेन, फ्रांस, चिली, केनिया और नॉर्वे जैसे देशों में कार्यक्रम किए। आपने फ्रांस में आयोजित इंडिया फेस्टिवल और स्पेन में आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल में भी भाग लिया। हाल ही में आपने ट्यूनिशिया में ICCR द्वारा आयोजित भारत स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति दी। एक रचनात्मक कलाकार के रूप में प्रभात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए आयामों की खोज में निरंतर कार्यरत हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। वी ब्रिंग यू अ संतूर रिसाइटल बाय प्रभात मुखोपाध्याय। Born in family of rich musical tradition, Prabhat has already made himself a name in the world of Santur. He was initiated by Sri Dulal Roy. He took Taleem from Ustad Sabir Khan in Tabla for a long time to acquire a sense of rhythm and tad. He took extensive training in Santur from Pandit Torun Bhattacharya and Padma Shri Pandit Bhajan Supori, the two maestros in the instrument. Presently, he is taking tutelage in the intricacies of instrumental music from the great Sarangi Maestro, Padma Bhushan Ustad Sabri Khan, Sarod Maestro, Padma Vibhushan Ustad Amjad Ali Khan. An MA in music, Prabhat has attained the distinction of bringing in a synthesis of the various phrases of vocal and instrumental music to make it both lyrical and ethnic. A-grade artist of All India Radio and Doordarshan, Prabhat has travelled extensively within the country as well as in Europe. He has performed in so many countries, Spain, France, Chile, Kenya, Norway. He participated India Festival in France and Spring Festival in Spain. Recently, he performed India Independence Day Festival in Tunisia, organized by ICCR. A creative artist, Prabhat has been in search of new dimensions in Hindustani classical music.
0: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का आरंभ राग रागेश्वरी से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप, जोड़ और झाला। विलंबित रचना झपताल और दुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: टुडे ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय बिगिंस हिज संतूर रिसाइटल विद राग रागेश्री। ही नाउ प्रेजेंट्स आलाप, विलंबित लय कॉम्पोजिशन सेट टू झपताल एंड द्रुत लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: ये था प्रभात मुखोपाध्याय द्वारा संतूर पर बजाया गया राग रागेश्री। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन पहाड़ी धुन से कर रहे हैं।
1: That was राग रागेश्री performed by प्रभात मुखोपाध्याय। He concludes his recital with a पहाड़ी धुन।

0: अभी आप प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुस्तफा हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: That was धुन played by प्रभात मुखोपाध्याय। He was accompanied on tabla by Mustafa Hussain. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studio of Akashwani Delhi. Also came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी कि 1143 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी भाषा में समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति

0: डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वह सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लियंड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Marke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the botanical garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and 2 of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. The Defence Ministry today said that certain posts circulating on social media platforms have sought to misrepresent the Defence Minister Rajnath Singh's address delivered on the floor of